पता नहीं मैं इस बात को पहुंचा पाया हूं या नहीं। आबरू कुर्बान करना सबसे ज्यादा मुश्किल है। यानी इमाम अलैहिस्सलाम इस बात को बर्दाश्त कर रहे हैं कि लोग मुझे ताने देते रहे कि मैंने हुकूमत छोड़ दी है, मैंने खिलाफत से दस्तबरदार हो गया। हर आदमी ताने देगा कि हसन मुस्तफा ने खिलाफत छोड़ दी, हुकूमत हाथ में थी, हुकूमत छोड़ के आ गए। कहा मैं ताने बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरे बाबा से मुतालिक कोई मेरे सामने मिंबर पर तौहीन करे। मैं कभी भी दीन के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, मैं कभी भी असले दीन पे, पैगंबर इस्लाम पे, अपने बाबा अली मुर्तजा पे कोई समझौता नहीं करूंगा कि वो कह दें कि हाँ नहीं आप हुकूमत में रहें, मनसब आप पे बाकी रहेगा, लेकिन काम वही कुछ होंगे जो हम करेंगे। मौलाना कहना ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि हर हराम और हर तरह का काम होता रहे और मेरा नाम इस्तेमाल होता रहे। नहीं, मैं ताने बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि अली इब्न अबी तालिब की मेरे सामने तौहीन की जाए। पता नहीं मैं बात को पहुंचा पाया हूं या नहीं, या मैं इसमें तफसील का वक्त नहीं है। लेकिन इमाम हसन मुश्तबा वापस आ गए और फिर क्या सलूक हुआ इमाम के साथ? मदीने जब वापस पहुंचे हैं तो यहां तक सलूक होने लगा कि लोग जब इमाम से मिलते थे तो कहते थे अस्सलामु अलैका या मुज़िल्लल मुस्लिमीन, ए मुसलमानों को जलील कराने वाले आप पे सलाम। यहां तक कि कोई शाम से आया ना तो वो अमीरुल मोमिनीन की शान में गुस्साखियां कर रहा था नाम लेके इमाम हसन मुश्तबा के सामने। तो इमाम ने एक मरतबा से मुस्करा के देखा, कहा महसूस होता है कि तू परदेसी है, तुझे मालूम नहीं अली कौन है। अगर तू बेघर है तो मेरा घर हाजिर है, अगर लिबास चाहिए तो लिबास हाजिर है, खाना चाहिए तो खाना हाजिर है, और अगर तुझे ज़्यादा सफ़र चाहिए तो ज़्यादा सफ़र हाजिर है। तो उसने फ़ौरन सवाल किया कि मुझे तो ये बताया था कि आप अली इब्न अबी तालिब के बेटे हैं। इमाम ने कहा तूने बिल्कुल सही सुना। कहा लेकिन मैं तो आपके बाबा की शान में गुस्साखी कर रहा हूँ, मैं तो जसारत कर रहा हूँ, मैं उनकी तौहीन कर रहा हूं। इमाम ने कहा हां तू तौहीन इसलिए कर रहा है क्योंकि तू मेरे बाबा को जानता नहीं है, तुझे जो शाम वाले ने बताया है तू इसलिए तौहीन कर रहा है, अगर तू जानता होता तो कभी तौहीन ना करता। कहा ये आपको किसने सिखाया, ये आप इस तरह से क्यों पेश आ रहे हैं इस अखलाक से? कहा ये मेरे बाबा ने सिखाया। मैं जानता हूं ये सख्त जुमले हैं, लेकिन मैं इसलिए पेश करना चाहता हूं ताकि आपको अंदाजा हो इमाम की मजलूमियत कितनी ज्यादा है। तो एक मरतबा उसने कहा कि ये आप क्यों मुझे सब कुछ कह रहे हैं? इमाम ने कहा क्योंकि ये मेरे बाबा ने मुझे यही सिखाया। एक मरतबा रोने लगा, कहा मौला मेरी तौबा कबूल हो सकती है? मैंने अली इब्न अबी तालिब की शान में गुस्ताखी की, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? इमाम ने कहा एक शर्त है, तेरी तौबा कबूल है, मैं माफ कर दूंगा, और अगर मैं माफ करूंगा मेरे बाबा माफ कर देंगे, लेकिन एक शर्त है मेरी तरफ से। का क्या शर्त है? का अब जब शाम वापस जाना तो शाम वालों को बताना अली ऐसे हैं जैसा मैंने बताया, वैसे नहीं है जैसा शाम वालों ने बताया। पता नहीं बात पहुंचा पाया हूं। इमाम ने कहा अली वैसे नहीं है जैसा उन लोगों ने बताया, ऐसे हैं जैसा मैंने बताया। बहुत रोया, इमाम के हाथों को चूमने लगा, फिर कदमों में गिर गया, पाओं को चूमने लगा। कहा मौला मुझे मालूम नहीं था। कहा तू जानते ही नहीं है मेरे बाबा मुझसे बेहतर थे। लेकिन इमाम मासूम की अलामत यह है कि बाद वाला पहले की ताईद करेगा, तरदीद नहीं करेगा। अब इमाम ने मुख्तलिफ अंदाज से तारुफ करवाया। अज़ीज़ाने गिरामी सबसे जो मजलूमियत है ना, मैदान करबला की वजह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मजलूम कहा जाता है, लेकिन इमाम हसन मुश्तबा की पूरी जिंदगी में सख्तियां, बहुत ज्यादा सख्तियां। जब वापस आ गए तो मुसलसल सख्तियां। मैं यहां पर दो जुमले पेश करूंगा। तारीख में यहां तक लिखा है कि इमाम का गुस्साख गुनाहाने कबीरा में से, नबी और इमाम का गुस्सा गुनाहाने कबीरा में से वाजिबुल कत्ल है। हुकूमत इस्लामी में अगर हो तो अगर जसारत करे, गुस्साखी करे, वो वाजिबुल कत्ल होता। तो एक नाबीना था, हाथ में ऐसा था, छड़ी थी उसके, और उस छड़ी के आखिर में कील लगा हुआ था। उसने सवाल किया हसन मुश्तबा कहाँ, तो किसी ने हाथ पकड़ के कहा ये तुम्हारे साथ खड़े। तो उसने इमाम के पाँव पर एक मरतबा उस असा को रखा, कील को दबाना शुरू किया और इमाम के पाँव में सुराख किया। तो इमाम उठे, मस्जिद से घर आ गए तो जनाब अब्बास ने देखा, एक मरतबा कहा मौला आपके पाए मुबारक से खून बह रहा। जनाब अब्बास बर्दाश्त नहीं कर सके, गैरत अब्बास मशहूर है ना। तो एक मरतबा जनाब अब्बास ने कहा मौला आपके पाँव से खून बह रहा, का कोई बात नहीं। कहा नहीं मौला, अगर आप वाकई मुझे अपना मानते हैं तो मुझे बताएंगे कि किसने ये जसारत की है। कहा कि एक नाबीना था, उसने मेरे पाँव में जानते बूझते हुए एक असा रखा, उसमें कील था और उसने जानबूझ के मेरे पाँव में सुराख किया। फौरन जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम आए और आके सवाल किया, कहाँ है वो गुस्साख इमामत? सवाल किया और उसको उसी वक्त तहतेक किया, उसको फौरन फिनार किया, उसको कत्ल किया। जब पूछा कि आपके भाई ने उस आदमी का कत्ल कर दिया,
کہا امامت کے گستاخ کی سزا عباس

ना हो, जब तक इंसान के अंदर कमाल ना हो, इंसान के अंदर हुस्न ना हो, तो कोई भी इंसान को चाहेगा नहीं। चाहत पैसे के ज़रिए से, रोबो दबदबे के ज़रिए से, डराने के ज़रिए से, इन्फ्लुएंस के ज़रिए से, सिफारिश के ज़रिए से, कोई भी इंसान किसी को नहीं चाहता, कोई भी ज़ात किसी को नहीं चाहती। उसके अंदर कोई कमालात हों, कुछ खसूसियात हों, कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हों जिसकी वजह से लोग उसे पसंद करें, लोग उसे चाहें। अगर हम रिवायात का मुतालिया करें या आयात का मुतालिया करें, अल्लाह तबारक व तआला ने क़ुरान में और मुहम्मद व आले मुहम्मद ने रिवायात में उन बातों की तरफ इशारा किया है जिनकी वजह से इंसान को लोग पसंद करने लगेंगे, लोग चाहने लगेंगे। मैं तीन लफ्ज़ों में आज की तकरीर को आपकी खिदमत में पेश करूँगा। एक है हुस्न और दूसरे एहसान और तीसरे मोहसिन से हमारा राबता, मोहसिन यानि अल्लाह। हुस्न और एहसान ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से लोग पसंद करते हैं दूसरे लोगों को, या अईमाथार अलैहिस्सलाम अपने चाहने वालों को और अपने मानने वालों को पसंद करते हैं, या अल्लाह अपने बंदों को पसंद करता है। बात अगर हुस्न की हो, बात अगर ब्यूटी की हो, बात अगर खूबसूरती की हो, तो हम दो चीज़ों में इसकी गुफ्तगू करेंगे। एक, कलाम में हुस्न का होना बहुत ज़रूरी है। जुमले, खिताब, खुतबा, स्टेटमेंट्स, ये वो चीज़ें हैं जो लोगों के अंदर मोहब्बत पैदा करते हैं। जिसकी ज़बान अच्छी होती है, लोग उसकी ज़बान की वजह से उसे पसंद करने लगते हैं। जितने कलमात जज़्ज़ाब होंगे, जितने अल्फाज में कशिश और अट्रैक्शन होगी, उतना ही लोग उसे पसंद करेंगे। अगर अल्फाज और जुमले और खुतबे और तकारीर में अट्रैक्शन ना हो, कशिश ना हो, लोग पसंद नहीं करते। लोग ज़बान से निकले हुए जुमलात को, ज़बान से निकले हुए कलमात को तोलते हैं और उसको उसकी एक मेयार बनाते हैं। उसी मेयार के तहत लोग एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। लेकिन कलाम में अगर एक लफ्ज़ भी बिगड़ जाए, कलाम में एक लफ्ज़ भी ऐसा हो जिसे लोग पसंद नहीं करते, तो उसका असर ज़ात की पसंद पर पड़ता है और नापसंद पर पड़ता है। कलाम खूबसूरत होना चाहिए, कलाम हसीन होना चाहिए। परवरदिगार आलम ने हमारे हर नबी को और हर इमाम को परवरदिगार आलम ने वो गुफ्तगू का सलीका बउनवान आठ, बउनवान नेमत, बउनवान हदिया अता किया था। जब वो बोलते थे तो लोग उनको सुनते थे, जब बोलते थे तो लोग उनको सुनने के लिए दूर दराज का सफ़र तय करके आते थे। इसलिए कि अगर अल्फाज में, लफ्ज़ों की चीनिश में, लफ्ज़ों के इंतखाब में अगर ज़रा बराबर गड़बड़ी हो जाए, तो लोग ना तो ना जुमला पसंद नहीं करते, उसके नतीजे में बोलने वाले को भी पसंद नहीं करते। फ़ारसी में एक मुकर्रर हैं जो तमसीलात बयान करते, पैराबल्स को बयान करते हैं, मिसालों को बयान करते हैं, उन्होंने खूबसूरत जुमला कहा है। देखिए, लफ्ज़ है, एक हर्फ भी अगर कहीं बढ़ जाता है या वह हर्फ को हटा लिया जाता है तो माना बदल जाता है, उसकी मीनिंग्स बदल जाती हैं। जैसे उन्होंने मिसाल दी है आगा मोहम्मद रज़ा रंजबर, जो उलमा इकराम यहाँ पर तशरीफ़ फरमाएँ, वो नाम से आशना है, वो मिसालें और पैराबल्स में नसीहतों को बयान करते हैं। वो कहते हैं आफ्ताब, आफ्ताब जो लफ्ज़ है, जिस सूरज को आफ्ताब कहते हैं, अगर आफ्ताब लफ्ज़ जो बड़ा खूबसूरत है, सूरज है वो रोशनी को इंसान उसको पसंद करता है, अगर इस आफ्ताब लफ्ज़ पर एक हर्फ को बढ़ा दिया जाए या हर्फ बढ़ जाए, जो हा है छोटा है, अगर उसको बढ़ा दिया जाए, आखिर में हो जाता है आफ्ताबा या आफ्ताबे। अब आफ्ताब यानि सूरज, आफ्ताबे या आफ्ताबा यानि लोटा जो इंसान इस्तेमाल करता है, लोटा हाथ साथ में लेकर जाता है। आजकल जो अफ़गानिस्तान की तस्वीरें पक्ष कर रहे हैं उसमें ये लोटा भी दिखाया जा रहा है, हाथों में लोटा लेके घूम रहे हैं सारी दुनिया पर हुकूमत करने के लिए। आफ्ताब लफ्ज़ है, अगर आफ्ताब पर एक हर्फ भी बढ़ जाए तो हो जाता है आफ्ताबा यानी लोटा। एक लफ्ज़ जो कितनी बुलंदी पर था, एक हर्फ के इजाफे होने से गिर जाता है। जिस तरह से एक हर्फ के बढ़ जाने से लफ्ज़ अपनी जगह छोड़ देता है, एक गलत लफ्ज़ के इस्तेमाल से पर्सनालिटी भी नीचे आ जाती है। इसलिए पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, अपनी बातों को सोना और चांदी से ज़्यादा महफूज

यहाँ रहना चाहते हो, यहीं ज़िंदगी गुजारना चाहते हो। लेकिन एक बात भी याद रखना ज़रूरी है कि आखिरत के लिए ऐसी ज़िंदगी गुजारो कि कल तुम्हें मरना है। ज़िंदगी मजबूत हो,

हाथ में जाए अल्लाह के हाथ में जाता है, इसराइल का हाथ नहीं है, ये दस्ते परवरदिगार आलम है। अगर इस तरह का तसव्वुर हो तो खूबसूरत समाज और खूबसूरत कम्युनिटी बन सकती है जनरसिटी के एतबार से। इमाम ने एहसान किया, सिर्फ इतना नहीं, इमाम का दस्तरखान पर लोग आते जाते थे, खाते चले जाते थे, नाम नहीं पूछा जाता था, कबीला नहीं पूछा जाता था, शजरा नहीं पूछा जाता था, इमाम का एहसान मशहूर है। एहसान की वजह से भी मोहब्बत पैदा होती है, क्यों? सारे लोग इस दरवाज़े पर आते हैं, उनको पता है यह दरवाज़े से मिलता है और वो मोहब्बत करने लगते, वो चाहने लगते उन लोगों को जो उनको अता करते थे। इसे कहा जाता है सखावत और जेनरसिटी लोगों के अंदर मोहब्बत पैदा करती है, लोग चाहते हैं। तो इमाम एहसान के नाम से मशहूर है, करामत के नाम से मशहूर है। एक हौसन उसने गुफ्तार और उसने किरदार, दूसरे एहसान लोगों की परेशानियों को हल करना, चले तीसरी तरफ भी चले, इमाम ने अपने राबिते को अल्लाह से कैसा होना चाहिए उबूदियत का सबक दुनिया को पढ़ाया है। इमाम एक है इबादत इमाम, एक है उबूदियत इमाम, आबुद होना किसे कहते हैं। इमाम हसन की ज़िंदगी का मुताला करें इंसान, आमतौर से इन वाक़ियात को हम नहीं बयान करते हैं, मज़लूम है इस एतबार से भी इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम। आपकी तारीख को तफसील के साथ बयान नहीं किया जाता, किस तरह आपकी इबादतें मशहूर हैं, किस तरह आपकी उबूदियत मशहूर है तारीख में। मुसल्ले पर आप खड़े होते तो आपका चेहरे का रंग बदल जाता था, मुतगय्यर हो जाता था। 20 मरतबा या बाज़ रिवायतों में 25 मरतबा का जिक्र है कि आपने पैदल हज किया है, आप पियादा आपने हज किया है, सवारी आपके पास होती थी, फैसिलिटीज़ आपके पास होते थे, इसके बावजूद आप अल्लाह के घर की तरफ पैदल जाते थे। ये बताने के लिए जो इश्क रास्ते में सफ़र करता है वो वसाइल की तरफ तवज्जो नहीं करता, वो इम्कानात की तरफ तवज्जो नहीं करता है। फिर हमसे सवाल ना करना नजफ़ से करबला की तरफ चलने में फ़ायदा क्या है। मेरे अजीज़ों, इश्क के रास्ते में सवाल नहीं होते। कोई सवाल करे इमाम हसन मुस्तफ़ा से, 7 ऊँट मौजूद है, मौला आप चल क्यों रहे, आप पैदल क्यों चल रहे हैं, आप बेफुटेड हैं, पैदल चला है इमाम ने, 25 मरतबा हज किया इमाम ने, उम्रे किए, पैदल क्यों चल रहे हैं। क्या इश्क के रास्ते में क्या वसाइल, क्या इम्कानात, तवज्जो अगर उस तरफ हो तो इंसान ख़ुद को भुला देता है, वसाइल की क्या ज़रूरत होती है। तो नजब से लेकर करबला भी जो लोग चलते हैं ये इश्क का सफ़र है। यहाँ चलने पर सवाल ना करो, देखो मोहब्बत के तकाजे क्या है, दोस्ती के तकाजे क्या है। इमाम इबादत का अंदाज़ और अल्लाह के रास्ते में चलने का अंदाज़ इमाम बता रहे हैं। जब भी इमाम कुरान मजीद की इस आयत की तरफ पहुँचते, इस आयत के टुकड़े की तरफ पहुँचते, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, इमाम रुक जाते थे और कहते थे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। गोया इमाम महसूस करते थे कि अल्लाह आपसे बात करना चाहता है, अल्लाह आपसे गुफ्तगू करना चाहता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, पता ना आयतुल्लाह जवाद अमली कहते आमनू की जगह थोड़ी देर के लिए अपना नाम रख दो, तो ऐसा लगता है कि अल्लाह हमसे बात कर रहा है। तो जब अल्लाह की तरफ से बात शुरू हो तो इंसान को लब्बैक कहने चाहिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। इतना ही नहीं मेरे अज़ीज़ों, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मस्जिद के दरवाज़े पर दुआ लिखी हुई है। आमतौर पर मैंने देखा लोग खड़े होते हैं वहाँ पर मस्जिद के दरवाज़े पर, उस मुख्तसर से दुआ को पढ़ते हैं, फिर मस्जिद में दाखिल होते हैं, इस काबिल अपने आप को बना लेते हैं कि हम अपने आप को अल्लाह के घर में दाखिल करें, एंटर हों अल्लाह के घर में। ये दुआ और इस तरह का अंदाज़ इमाम हसन मुश्तबा का अंदाज़ है। जब भी हमारे दूसरे इमाम मस्जिद में दाखिल होना चाहते थे, आपके आंखों में आंसू होते थे और अल्लाह की बारगाह में आप ये दुआ करते थे, अल्लाह की बारगाह में ये इकरार करते थे, परवरदिगार ज़ायफ़ों का बेबाबिक अल्लाह आई मथार की ज़िंदगी से हम तौहीद को उठाएं। मेरे अज़ीज़ आई मथार की ज़िंदगी से हम इबादत के सलीक़ों को उठाएं। परवरदिगार तेरा मेहमान तेरे दरवाजे पर खड़ा है, इलाही मिस्कीनों का बेबाबिक, परवरदिगार हाथ खाली इंसान तेरे दरवाजे पर खड़ा हुआ है, इलाही साइलों का बेबाबिक, परवरदिगार गदा तेरा गदा तेरा फकीर तेरी बारगाह में मांगने वाला तेरे दरवाजे पर खड़ा, बेबाबिक दरवाजे पर खड़ा हुआ है।

मुसीबत को भी देखने वाले इमाम का नाम है इमाम हसन। बताओ कौन सी मुसीबत है? हजरत जहरा मजलूमय तारीख है, मजलूमय तारीख है, और अली मुर्तजा साबिर हैं। अस्सलाम अलैका या असबर साबिरीन, सलाम हो तुझ पर आए सबसे ज़्यादा सब्र करने वाले, इसलिए कि शहज़ादी की मुसीबत पर सब्र करने वाले को अली कहते हैं। और मसाइब को इमाम हसन ने भी देखा है। हज़रत फिज़ा कहती हैं हज़रत जहरा की शहादत के बाद इमाम हसन की आंखों से आंसू रुकते नहीं थे, रात होती तो ये हसन बेचैन हो जाते थे, पता नहीं क्या देख लिया होगा हसन, क्या देखा होगा, चाहे वो मदीने में, मदीने में वो गली और वो गली में फातिमा को गुजरना और फातिमा के हाथों से वो परवाने का छीनना और परवाने को छीन कर फातिमा के हाथ पर ताजियाना मारना। ए हसन मुश्तबा आपने क्या देखा है, क्या देखा है। आयतुल्ला खातमी कहते हैं मसाइब पढ़ते हुए, जब कौम आए थे मासूम कौम के रोदे में मसाइब पढ़ रहे थे, और मसाइब पढ़ते पढ़ते उन्होंने जुमला कहा, मासूम की मुसीबत को मासूम ही समझ सकता है, हम में उतनी ताकत नहीं है, उतनी ताकत नहीं है, मासूम समझ सकता है। क्यों हसन रो रहे थे, क्यों हसन गिरिया कर रहे थे, क्या देखा हसन ने? शायद ये देखा हो, उस रिवायत को नकल करते हैं कि इमाम हसन की ज़बानी कि जब मस्जिद जा रहे थे तो फातिमा के हाथ में हसन का हाथ था, शहजादी हसन को खींच कर ले जा रहे थे, चलो बेटा मस्जिद चलते हैं। नबी की बेटी 3 घंटे मस्जिद में खड़ी रही, किसी ने ये तक नहीं कहा इब्ने रसूल बैठ जाए। जब वापस आ रही थी बीबी घर, अब बीबी के पैरों में ताकत नहीं थी चलने की। अब इमाम हसन फरमाते जब दरबार जा रहे थे तो माँ के हाथों में मेरा हाथ था, लेकिन जब माँ वापस आ रही थी मैं माँ का हाथ पकड़े हुआ था, अम्मा चलो घर चले। शायद हसन ने वो मंजर देख लिया, दिल में हसन के दर्द था, दिल में हसन के दर्द था। कई मुसीबतों को इमाम हसन ने देखा है। फातिमा की मुसीबत, मौलाए कायनात के सर पे तलवार लगी, सर का जख्म गहरा था, खून बह रहा था, सबसे पहले अली के सर को अपने जानों पर लेने वाले हसन मुश्तबा है, उस जख्म को अपने हाथों से आंखों से देखने वाले इमाम हसन है, और देखा और बर्दाश्त किया, दर्द है इमाम हसन के सीने में। और ये इमाम हसन जो इन सारी मुसीबतों को अपने सीने में लिए हुए है, तो ऐसे इमाम को तो जहर नहीं देने चाहिए ना, इतना गमजदा इंसान है, इतना दुख भरा इंसान, सीने में दर्द है, क्या इस सीने में जहर पहुंचाया जाता है? एक मरतबा नहीं, दो मरतबा नहीं, मैं माजरत चाहता हूँ, संगीन जुमला है मसाइब का, लेकिन मुझे कहने दीजिएगा, एक मरतबा नहीं, दो मरतबा नहीं, 7 मरतबा इमाम को जहर दिया गया। जब 6 मरतबा नाकाम हुआ दुश्मन, 7वीं मरतबा जो जहर मंगवाया गया था, इतना संगीन था वो जहर, अगर किसी दरिया में वो जहर डाल दिया जाता तो उस दरिया की मछलियां मर जाती, ऐसा जहर इमाम को दिया गया। इमाम के जिगर के टुकड़े हो गए, इमाम का बदन जर्द हो चुका था, इमाम को खून की कह होने लगी, इमाम हुसैन ने तश्त इमाम के सामने रखा कि इमाम के जिगर के टुकड़े उस तश्त में गिर रहे थे। मैंने मसाइब का जुमला यूं ही पढ़ दिया है, आसान नहीं है ये, यूं तश्त में टुकड़े गिर रहे थे, जिगर के टुकड़े इमाम के गिर रहे थे। एक नजर इमाम ने इमाम की इस मुसीबत पर डाली, मौला इमाम हुसैन की आंखों से आंसू जारी हो गए, और इमाम हसन की तरफ रुख करके कहा, भैया ये क्या हो गया, भैया भैया आपका जिगर टुकड़े टुकड़े हो गया, आपका जिगर पारा पारा हो गया। पता है इमाम हसन ने क्या कहा? वही जुमला जो हम बार बार दोहराते हैं, ये इमाम हसन का जुमला है। इमाम हसन ने सर उठाकर कहा, अरे हुसैन मैं ये मुसीबत अजीम है, लेकिन ला यौमा का यौम

0: ये लो, बहुत एहतियात करना ज़ायदा। अगर ध्यान से ये काम नहीं करोगे तो ये मेरी मौत का परवाना होगा जो तुम्हारे हाथ में दिया है मैंने।
1: तुम जिंदान से भाग क्यों नहीं जाते मुख्तार? कहीं जुबहरियों के यखनी तुम्हें पसंद तो नहीं आ गई? तुम कब तक उमर के बेटे की तवज्जो बल्कि सफिया की आजिज़ाना गुजारिशों पर तवज्जो करके अपनी आजादी की सिफारिशें कराते रहोगे?
0: ये आखिरी बाजी है ज़ायदा। अगर मैं जिंदान से भाग जाऊं तो जुबैरियों को मेरे खुरूज की खबर मिल जाएगी, सारे जहां को पता चल जाएगा कि मेरा क्या इरादा। दुश्मनान अली ऐनुल्कदम में तवाबीन के कत्लेआम के बाद इस बात पर यकीन रखते हैं कि शियों का खतरा खत्म हो गया। इसी यकीन पर रहें तो हम सबका फायदा है।

वर्दा के पर कटे हुए कबूतरों, तन्हा दोबारा मिलने की तमन्ना ही हमारे चाक दिलों को तसल्ली दे सकती है। सुलेमान, मुसैयब, बिनवाल और बिन साद मरे नहीं हैं। वो लोग सूरज की शक्ल में सुबह के वक्त रोजाना ता कयामत तुलू करते रहेंगे। वो लोग हर नेक जुबान का नगमा बनकर जिंदा रहेंगे। अगर हम भी दीनदारी और खुलूस में उनके जैसे होते तो हमारे उरूज के पर न कटते। अभी बहुत सी ऐसी राहें हैं जिन पर हम नहीं चले हैं, बहुत सी बातें हैं जिन्हें हमने सुना नहीं, बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जिनका हमने इकरार नहीं किया, और देखने की बहुत सी चीजें जो हमने नहीं देखी। तवाबी, आज के बाद से एक और जिम्मेदारी अपने सर ऊपर रखते हैं। हमें ऐनुल वदा और कर्बला के खून का इंतकाम एक साथ लेना होगा।

अब हम अपने अपने घरों को लौट जाएंगे। हमें इन सूखी हुई और उजड़ी हुई जड़ों की दोबारा अभियारी करनी होगी। इस तहरीक को अब आगे बढ़ाना, दोबारा कुव्वत जमा करने पर मशरूत है। हमारी खबरें आप तक पहुंचाने वाला शख्स बसरा में मुसन्ना बिन मखरबा और मदाइन में बिन हुजैफा होगा। हमारी तमाम खबरें लोगों के जरिए आप सब तक पहुंचेंगी। जाइए जाइए, कुछ जान ताजा कीजिए और अपने आप को बनाइए यहाँ तक के फिर उठें।

0: दुरूद हो ऐनुल वर्दा के थके मांदे मुजाहिदों पर। मैं अबू इसहाक मुख्तार सकफी की तरफ से खत लेकर आया हूं।
1: मुख्तार, खुदा उसकी गलतियों को माफ ना करे। अगर मुख्तार तवाबीन की मदद के लिए आया होता तो ऐनुल वर्दा की इस जंग का नक्शा ही कुछ और होता।
0: दुरूद हो ऐनुल वर्दा के शेर दिल मर्दों पर। हवा ने आपकी शुजातों की खबर सारे जहान में फैला दी। शायरों ने आप लोगों की मधोसना में वो बातें की हैं कि आवाम हैरान है। दुरूद हो आप लोगों पर।
1: बहुत शर्मनाक है।
2: क्या लिखा उसने रुफा?
1: सरासर झूठ। हमसे चाहता है कि उसकी बैत कर लें। कट जाए वो हाथ जो मुख्तार की बैत करने को तैयार हो।
0: रुफा है, खुदा की कसम ये मुनसिफाना नहीं। तुम लोगों का एक ही तो काम है, मुख्तार एक लम्हे के लिए भी कातिलाने हुसैन से किसास लेने से गाफिल नहीं हुआ है। आप लोग राह निजात को अपना खून निसार करने में देख रहे थे और मुख्तार मलून शयातीन का नापाक खून बहाने में। मकसद एक है मगर रास्ते दो हैं।
1: जंगजादे, तो क्या तुम समझते हो कि तवाबीन ख्वामा ख्वा खुदकुशी करने के लिए ऐनुल वर्दा की तरफ गए थे? हमारी जीत में सिर्फ एक कदम का फासला रह गया था और वो कदम मुख्तार था जो कि न था।
0: जहां तक मैं मुख्तार की गैरतमंदी से वाकिफ हूँ, ये कह सकता हूँ कि मुख्तार सुलेमान से तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद भी ऐनुल वर्दा की तरफ चला आता अगर जुबेरियों की गुलो जंजीर का कैदी ना होता।
1: मतलब मुख्तार कैद में था?
0: अब तक कैद में है।
1: मगर क्यों?
0: क्यों का सवाल जुबेरियों के कारिंदे से पूछो। जिस दिन उसके पास सुलेमान का खत आया उसी दिन आधी रात को मुख्तार के घर पहुंचकर उसे कैद करके ले गए थे।
2: इस तरह तो मुख्तार का कोई कसूर नहीं है। मकार तो बिन यजीद है जो अली के शियों से दोस्ती का इजहार करके उसके पीठ पर छुरा घोंप देता है। यकीनन मुख्तार को आले जुबैर की मुखालफत के जुर्म में कैद किया है।
3: हम कूफे के जिंदान पर हमला करके मुख्तार को छुड़ा सकते हैं।
0: नहीं मुसन्ना, मुख्तार के कयाम की खबर छुपी रहनी चाहिए।
2: फिर मुख्तार का क्या होगा जो कैद में है?
0: अगर मुख्तार के कयाम की खबर छुपी रहे और किसी को पता न चले तो जुबेरियों के पास मुख्तार को कैद रखने का कोई सबूत ही नहीं बचेगा।
2: जब उन्होंने उसे कैद किया था तो उनके पास कोई सबूत था?
0: उन्होंने मुख्तार को इसीलिए कैद किया कि वो तवाबीन की मदद न करे।
1: क्या मतलब? ज्ञान
0: बिन यजीद नहीं चाहता था कि तवाबीन ऐनुल वर्दा के फाते बन जाए। वो तवाबीन के कूफे में होने को आले जुबैर की हुकूमत के लिए खतरा महसूस कर रहा था। वो चाहता था कि ये लोग शिकस्त खा लें ताकि कूफे में उनकी कोई ताकत ना बचे।
1: सुभान अल्लाह, तो फिर अबू इसहाक ने इस बारे में मरहूम सुलेमान से कोई बात क्यों नहीं की? उसने हमें जुबैरियों के इरादे से आगाह क्यों नहीं किया?
0: ये भी बिन यजीद की चाल थी कि उसने बड़ी सफाई से मुख्तार और मरहूम सुलेमान के दरमियान फूट डाल दी।
1: इस तरह तो वो ऐनुल वर्दा के शहदा का खून इस खयानतकार बिन यजीद के सर है।
0: सियासत में इस तरह के खेल बहुत होते हैं रुफाए, इसीलिए अबू इसहाक कहता है कि सियासतबाजों से सियासत के साथ ही लड़ना चाहिए।
1: अबू इसहाक से कहो कि तवाबीन तुम्हारे साथ।
4: क्या लिखा है उसमें?
5: हम दोनों से मुख्तार की आजादी की दरख्वास्त की है। ये लो, तुम खुद पढ़ लो।

0: क्या करें?
1: समझ नहीं आ रहा।
0: मेरी राय तो यह है कि हमें मुख्तार को आजाद नहीं करना चाहिए।
1: तुम उमर के बेटे को नजरअंदाज

0: कर सकते हो, मैं तो ये नहीं कर सकता।
1: अगर खलीफा की औलाद हमसे नाराज हो, ये उससे बेहतर होगा कि खलीफा नाराज हो जाए। आजादी मुख्तार का मतलब वही पिछली परेशानियां और घबराहटें। अगर मुख्तार आजाद हो गया तो चैन से नहीं बैठेगा, खास तौर पर जबकि वो कैद किया गया है और जख्मी भी।
0: मुझे लगता है कि तवाबीन की ऐन उलवरदा में शिकस्त के बाद शियों के हाथ पांव कट गए होंगे और उनका सारा जोश खत्म हो गया होगा और ये मरवानियों के हरीफ नहीं हो सकते, लिहाजा वो मजबूर हैं कि हमसे इत्तेहाद कर ले।
1: ये बताओ, खलीफा को क्या जवाब दोगे अगर हमने मुख्तार को आजाद कर दिया?
0: खलीफा आखिर क्यों नाराज होंगे जबकि मुख्तार का आले जुबैर से कोई वास्ता नहीं है?
1: क्या तुम्हें यकीन है कि मुख्तार आजाद होकर आले जुबैर के खिलाफ साजिश नहीं करेगा?
0: अब तक तो नहीं की।
1: मेरी मानो तो मुख्तार को मार डाले और इसके शर से निजात हासिल कर ले।
0: लानत खुदावंद और शैतान रजीम पर।

0: इस छत को आखिर कितना घूरोगे मुख्तार? तुम्हारी निगाहों की तेजी ने तो छत में सुराख कर दिया। अब तो तुम्हारे सब्र और हौसले ने तुम्हारी चाह पूरी कर दी है।
1: आजाद हो गया?
0: बजाहिर तुम्हारी पुश्त बहुत मजबूत है। मुझे तो यकीन नहीं आता कि उमर के बेटे की मेहंदी आले जुबैर के यहाँ भी रंग ले आएगी। खलीफा जादे के खत ने अपना काम कर दिखाया।
1: यकीनन बिन यजीद ने उमर के बेटे की सिफारिश के बारे में अपने जुबैर से बात नहीं की, वरना वो मेरी आजादी के हुक्म के साथ अपनी मौत का हुक्म सादर न करता।
2: वो लोग तुमसे वादा लेने आए हैं ताकि तुम बैत न तोड़ो और हंगामा आराई ना करो। जैसा कि नजर आ रहा है कि तलातुल खैर का नवासा तुम्हारी आजादी के खिलाफ है, मगर बिन यजीद ने उसे चुप करा दिया है। तुम ध्यान रखना और उसको गुस्सा मत दिलाना, इससे पहले कि वो अपना फैसला बदल ले जल्दी करो। तुम्हारे कदम जंदान के बाहर पहुंच जाए तो कोई तुम्हारे कदमों की खाक भी नहीं छू सकेगा। अपनी शाल और कबा पहनो और चलो।

0: सिवाय कोफे के यतीमों में इजाफे के।
1: आजादी मशरूत है मुख्तार।
2: मशरूत किस बात पर?
1: तुम्हें कलाम इलाही पर हाथ रखकर कसम खानी होगी कि तुम बैत नहीं तोड़ोगे और आले जुबैर के खिलाफ कोई साजिश नहीं करोगे, और अगर कसम तोड़ोगे तो तुम्हें मक्के में 1,000 ऊंटों की कुर्बानी करनी होगी और अपनी तमाम तर मिल्कियत, चाहे औरत हो चाहे मर्द, सबको आजाद करना होगा।

0: Abril!
1: अमीर, क्या ये सच है कि आपने मुख्तार को आजाद कर दिया है?
2: हाँ, मुख्तार आजाद हो गया है।
0: क्यों?
2: क्यों? अब मैं तुम्हें जवाब दूंगा पिसर साहब। तुम लोगों को रोजी रोशन मुसलमानों के दारुल हुकूमत में दाखिल होने की इजाजत दी है। हाँ, क्या हमारे दरमियान तय नहीं पाया था कि तुम लोग अपने खाना खराब घरों में बैठे रहो और हमारी और अपनी हर तरह की राव रस्म का इनकार कर दो? हाँ
1: अमीर, मुख्तार की आजादी का हुक्म यानी आपकी और हमारी मौत का हुक्म, यही थी वो सियासत जिस पे आपको इतना नाज था? हाँ
2: जानता हूँ, मुख्तार को आजाद नहीं होना चाहिए था, मगर मुख्तार की आजादी उसने मुझसे मांगी जो हम सब के लिए अजीज व मोहतरम है और उसकी हुरमत वाजिब है।
1: आप पिसरे जुबैर के भेजे हुए हुक्मरान हैं या पिसरे उमर के भेजे हुए हुक्मरान हैं? मुख्तार की आजादी का मतलब फितना यानी अशुभ यानी जंग जंग जंग। आपने एक खलीफा जादे की दोस्ती का ख्याल क्यों रखा?
2: क्योंकि मेरे कान मेरे अपने नहीं थे, एक ऐसे खलीफा की अजमत और एहतराम से भरे हुए थे जिसने अरब को अजम और तुर्क और तातार और रोम और जंगी और हिंदू पर मुसल्लत कर दिया। ये ठीक है कि खलीफा जादे ने सियासत को छोड़ दिया है, मगर सियासत ने उसे नहीं छोड़ा। यजीद, जो कि यजीद था और किसी खुदा को नहीं मानता था, वो भी अब्दुल्ला इब्ने उमर के हुक्म को मानता था।
3: अमीर, मान लीजिए कि मुख्तार की आजादी इराक की हर हुकूमत के लिए खतरा है, चाहे उमवी हो या जुबैरी। मुख्तार एक अलवी हुकूमत बरपा करना चाहता है, अगर उसे ढील देंगे तो वो अपने ख्वाब सच्चे कर दिखाएगा।
2: मुख्तार कल तक खतरे का बाइस था शेमर, अब वो आवाज ना निकालने वाला मुर्गा है। उसके तवाब भाइयों के शिकस्त खाने से वो भी टूट गया है। दूसरी तरफ हमने कुरान को मुसालियत का जरिया बनाया है, उसने मुखालफत ना करने की कसम खाई है।
1: तो फिर आपने मुख्तार को पहचाना ही नहीं है? वो अपने ख्वाबों के ताजो तख्त को पाने के लिए कुरान तो क्या साहिब कुरान का भी इनकार कर देगा? अगर तवाबीन के पास मुख्तार जैसा कोई रहनुमा होता तो वो लोग ऐनुल वर्दा को मरवानियों का कब्रिस्तान बना देते। मुख्तार खुदा है, सियासत तो जंग है। मैं बारहा बारहा उसके आगे मغلوب हो चुका हूँ। शक मत कीजिए कि आपसे भी बहुत बड़ी खता सरजद हो गई है। कल जब ये सांप आप और आपके लोगों को डस लेगा, उस वक्त आप समझेंगे कि जरा सी भी सियासत नहीं जानते।
2: काफी है उमर साद। जिस दिन तुम रे के मोती के लिए हाथ पैर चला रहे थे और खून के दरिया में नहा रहे थे, उस दिन बड़ी मछली की फिक्र करनी चाहिए थी। आज मेरे दामन पर पंजे मार रहे हो और कह रहे हो कि ये बोसीदा है। ये बोसीदा दामन हमारे लिए छोड़ दो। हम जानते हैं कि जो मुख्तसर से सियासत जानते हैं, इससे खुद को कैसे बचा लें? तुम जाओ और उन हड्डियों से पना मांगो जिन्हें करबला के मैदान में तुमने दफन किया है। अहले बैत रसूल का रहम व मुरव्वत बहुत ज्यादा है, शायद तुम्हें इस मुश्किल से निजात दे दे। तशरीफ ले जाइए। और हाँ, हमने खुफिया तौर पर यह तय किया है कि आप लोग अपने घरों से नहीं निकलेंगे।

0: मैं वादा नहीं कर सकता कि आप जैसों की जान की जमानत कर सकता।
1: बिन यजीद
2: यजीद हाय हाय बहुत पलीन हाय इतनी पीली है हाय हाय चकरा राय
3: हाय हाय
2: फिर यजीद हाय हाय बहुत पलीन
3: हाय हाय
2: इतनी पीली
3: हाय हाय
2: इतनी पीली
3: हाय हाय
2: फिर यजीद हाय हाय बहुत पलीन
3: हाय
2: हाय
3: पलीन हाय
2: बिन यजीद हाय हाय बहुत पलीन
3: हाय हाय
2: इतनी पीली
3: हाय हाय
2: चकरा राय
3: हाय हाय
2: बिन यजीद हाय हाय बहुत पलीन
3: हाय हाय
4: रोको यार बंद करो तुम लोग भी वही हरकतें करोगे मनून कहीं के ये सारी बकवास यास्मीन बाबा के बच्चों के लिए सड़क छाप बदमाश और बिगड़े हुए बच्चों को सेफ देता है तुम लोगों के लिए नहीं जो खुद बिगड़े हुए और दूसरों के लिए नारे लगाते हो
5: अम्मा जा रिया बाबा फिर जैनी मरीज बन गए
6: रोना मत मेरी जान मत घबराओ मेरी बच्ची तुम्हारा बाप चकरा गया है यकीनन किसी ने आज इनके दुम पे पांव रख दिया है कुछ ज्यादा ही दिमाग खराब हो गया है
5: बाबा की तो दुम नहीं है इनका दिमाग कैसे खराब होता है
6: ये जिन ज्यादा हो गए हैं मेरी जान तुम लोग कमरे में जाओ ताकि मैं इनका जिन पकड़ सकूं।
7: अब्बो कली के बच्चे हमारा मजाक उड़ाते हैं और हमारे साथ नहीं खेलते जब घर के अंदर आकर खेलते हैं तो बाबा डांटते रहते हैं हम्स भी जब बाहर जाता है तो मुझे अपने साथ नहीं ले जाता आखिर मैं क्या करूं? मेरा घोंसला जवाब दे चुका है
6: बदतमीज
7: क्या मतलब है बदतमीज क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ हमारा क्या वास्ता कि हमारा बाप यजीदी
6: जाहिल के बच्चे
4: खुश रहिएगा क्या तरबियत की है आपने ये जाहिल के बच्चे मेरे लिए अजाब के फरिश्ते बन गए हैं
6: तुम्हारा दिमाग तो हिल गया है पाँव क्यों हिला रहे हो
4: पागल हो गया हूँ तुमने मुझे पागल बना दिया है क्या ये जिंदगी है कि मुझे घर के अंदर भी वही बकवास याद सुनने को मिलेगी जो गली के लोगों का फिरते जबान है शाबाश है मोहतरमा क्या पूर अमन घर बनाया है मेरे लिए
8: ये घर पूर अमन था तुमने इसे भी अमन बनाया ये सवाल मुझे पूछना चाहिए ना कि तुम्हें
4: जी हाँ जाहिर है बानो मोहतरमा को पूछना चाहिए कि उनके घर के बावर्ची खाने में दुम्बे की बिरयानी जो नहीं बनती उनको मखमल हरियर और महंगे लिबास पहनने को नहीं मिलते उनको हीरे मोती और सोने का ग्लूबन जो मैसर नहीं है उनके पास कनीजे और नौकरानियाँ नहीं है ना मैं सच कह जाऊँ बानो पर कि इतनी गुर्बत और खाक नशीनी की जिंदगी गुजार रही है कि अब थक गई है
8: मैं किसी चौराहे पर बैठे भिखमंगे की बेटी नहीं थी शहजादे मैं उस रात महल में रहने वाली थी जब मेरा हाथ मांगने आए थे भूल गए
4: बस भी करो जारिया तुम तो मेरा दिमाग ताजा मत करो
8: ये तुम हो जो जिंदगी को अपने मेरे और बच्चों के लिए जहरीली बनाते जा रहे हो फिर मुख्तार कैसे आजाद हुआ नहीं कि खौफ और हिरास ने हमारे घर को घेर लिया
6: उमर कुफो अब रहने की जगह नहीं है तुमने इन गलियों और लोगों से क्या अच्छा देख लिया जो दोनों हाथों से इस खराबे को पकड़कर बैठ गए और छोड़ना नहीं चाहते तुम भूल गए कुफा की औरतों ने भी तुम्हें किस जिल्लत और खुआरी के साथ मस्जिद कुफा से बाहर निकाला तुम पर पत्थर और डंडे बरसाए तूफ और लानत की हम कुफे से चले क्यों नहीं जाते
4: कहाँ चले जाए औरत मेरी तमाम जायदाद इसी खराबे में है
6: उमर चलो कुछ अरसे के लिए शामिया हिजाज की तरफ चलते हैं जब तक कुफे के हालात ठीक हो जाए अपनी जायदाद किसी अमानतदार के हवाले कर दो कि हमारे आने तक उनकी देखभाल करें
4: ये लोग इतने चोर हैं कि इधर हमने कुफे से बाहर कदम रखा और ये सब कुछ बेच खाएंगे
6: जब तुम्हारी जान तुम्हारी जायदाद में अटकी हुई थी तो तुम रे कैसे जाना चाहते थे
4: तुमने अपने आप को नाफहम क्यों बना रखा है जारिया रे का मामला अलग था और फिर मुझे कुफे से क्यों चले जाना चाहिए कुफा किस खबीस की मिल्कियत है जिसे मैंने चुराया है तो कुफे में क्या होना है जो मैं जाऊं मुख्तार और उसके जैसे लोग क्या बिगाड़ लेंगे तवाबी ने जो इतने सारे

0: स्वामी के उनका क्या हुआ?
1: हम कूफे से चले जाए, मैं कूफे से चला जाऊं ताकि सब ये बोलें कि पिसर साद ने कोई छुपने की जगह ताक ली है और अपनी दुम सर पे रखकर भाग गया है।

0: बाबा हाफ़िज़, ये सब क्या है? क्या किया तुमने अपने साथ मेरे बच्चे?
1: बच्चा नहीं हूँ मैं बुढ़िया, मैं हूँ हाफ़िज़ इब्ने उमर इब्ने साद इब्ने अबी वक़ास, सरदार जंग-ए-करबला का बेटा, फातेह।

0: क्या हुआ हाफ़ाज? ये सब क्या है? क्या किया तुमने अपने साथ? मेरे बच्चे?
1: बच्चा नहीं हूँ मैं बुढ़िया, मैं हूँ हाफ़्ज़ इब्ने उमर इब्ने साद इब्ने अबी वक़ास, सत्तार जंगे करबला का बेटा, फातेह ईरान का नवासा।
0: अच्छा अच्छा, इतने ढेरों ढेर लकब लगाओ ताकि सारे चोर उचक्के तुम्हारी जान के पीछे हाथ धोके पड़ जाए, तुम्हारी ये दुर्गत बना दे।
1: कसूर आपका है जो मुझे तलवार ले जाने से मना करती हैं।
0: किससे लड़के आए हो?
1: और उस शख्स से जो मेरे बाप की तोहिन करे। अगर मेरे पास तलवार होती ऐसा काम करता कि कूफे की हमला औरतें जब उमर साद के बेटे को देखे तो अपना हमल गिरा दे।
2: बेटा।
1: जी बाबा।
2: तुम लड़े क्यों थे?
1: और यान के साथ नहर पर मछली पकड़ने गया था कि माई गिरोह के 6-7 बच्चे हमारा रास्ता रोक के खड़े हो गए कि यहाँ हमारा कब्जा है, तुम्हें यहाँ शिकार का हक नहीं। उरियान डर गया, वो वापस लौटना चाहता था। मैं उनके सामने डटकर खड़ा हो गया। कब्जे का क्या मतलब है? नहर तो सबके लिए है, नहर खुदा की है। हमारी भैंस बढ़ गई। उरियान के मुंह से निकल गया, जानते हो किससे लड़ रहे हो? ये उम्र सात का बेटा है। उन खबीसों ने कहका लगाकर मेरा मजाक उड़ाया। एक ने आपको गाली दी, मैंने उसे मारा, सब मुझ पर टूट पड़े।
2: कौन सी गाली दी?
1: बेहतर होगा कि आप ना सुने। बहुत ही बुरी गाली दी।
2: तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं?
1: नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। नाक से खून बह रहा है, थोड़ा सा सर भी फटा है। अगर उरियान नहीं भागता तो उनका हशर नशर कर चुके होते हम। मैं एक था, वो लोग साथ थे। हैव की तलवार नहीं थी मेरे पास।
2: आज के बाद जहाँ भी जाओगे तलवार हमारी करके जाओगे। इन कूफियों से अब सिर्फ तलवार की जबान से बात करनी होगी।
0: क्या करना चाहते हो?
2: मैं वाली कूफा की माजूली का हुक्म लिख रहा हूँ।
0: तुम कब तक इस खातों किताबत पर दिल बहलाते रहोगे? अपने मुंह को खार में छुपा लिया है, रतराफ की खबर नहीं लेते। आज कुफा यजीद और उसके साथियों से बेजार है। तुम शिम्र और तुम लोगों के साथी अहले कुफा के मनफूर हो। कुफा के बच्चे रोजाना तुम लोगों की शक्लें लकड़ियों पर लेकर मजाही अशार पढ़ते हुए गलियों में घूमते हैं। अगर तुम जैसे लोगों की जुबेरियों के नजदीक कोई कदर मंजिलत होती तो वो तुम लोगों को खाना नशीन नहीं करते। तुम अपने ही घर में कैदी हो उमर, यकीन क्यों नहीं करते? खुदा की कसम हमारे पास कुफा छोड़ने के सिवा कोई हल नहीं है।
2: जारिया, अगर आंधी भी आ जाए तो वो भी मुझे कूफे से नहीं हिला पाएगी। अब तुम बोलती रहो।

0: ये शख्स नौ मन दूध वाली गाय की तरह हो गया है। कामयाबी से भरे हुए दूध के बर्तन को एक लात से गिरा दिया है। बिन मुती, इससे पहले कि तुम्हारे हुक्म की मोहर सूख जाए, अपने आप को कूफा पहुंचा दो और कहानी खत्म कर दो।
1: खुदा करे कि देर ना हुई हो।
0: हाँ, अभी निकले नहीं हो कि पहले ही हार गए?
1: कूफा एक खौफनाक मैदान है, मुझे फिक्रमंद होने का तो हक दीजिए। कूफे में सियासत और तलवार बयक वक्त चलाई जानी चाहिए, वरना हम उसे संभाल नहीं सकते। जनाब आली, ये फिदवी तो उसी वक्त बिन यजीद को कूफा भेजने के खिलाफ था। बहुत सियासत बाज था वो।
0: ये तो सियासत नहीं है, उमर के बेटे का फैला हुआ पांव है। वो दावा करता है कि सियासत और हुकूमत में दखल अंदाजी नहीं रखता, मगर हमारे बाज हुक्मरानों के साथ मुकादबा करता है। खत लिखा है उसने।

तुम्हारी मुख्तार से पुरानी दोस्ती है तो फिर कोशिश करो कि उसे अपनी तरफ बुला लो और बड़ी मिठास के साथ सुलेमान और उसके साथियों की तरह उसे भी जन्नत की तरफ रवाना कर देना। और हाँ, शमर और उमर साहब से भी माफी दोस्ती कर लो। मुझे हौसला नहीं है कि रोजाना उनके कासिद मक्के की तरफ रवाना हो, उनके आगे भी कुछ हड्डियां डाल दो, मगर इस तरह के लोगों को तकलीफ ना पहुंचे।

0: देखने का अरमान था बिन छुरे। क्या हाल चाल है?
1: बस आपकी दुआएं हैं। आप कैसे हैं?
0: हम दुआगो और शुक्रगुजार हैं। इस तरफ कैसे?
1: खुदा ने तौफीक दी तो उम्रे का शर्फ हासिल करने जा रहे हैं।
0: उम्रा? वो भी इन दिनों में, जबकि कूफे को तुम जैसे नामवर लोगों की जरूरत है। वाजिब फरीजे को छोड़कर मुस्तहब को अदा करने जा रहे हो?
1: कूफा आप जैसों के लिए वजीफों से भरा हुआ है जो सियासत को वाजिब फरीजा समझते हैं। हम जैसों के लिए नहीं जिनका सरोकार जरात से है। किस बात पे हंस रहे हो बिन मोती?
0: आपकी मुर्गी की दुम जो नजर आ रही है।
1: ये मुर्गी की दुम कहाँ है?
0: कूफे की राह यहाँ से है और आप मदीने से आ रहे हैं।
1: रोजे रसूल की जियारत को गए थे ताकि हमारे उम्रे का सवाब दोगुना हो जाए। इसमें कहाँ पर हंसने की बात थी?
0: ये कहो कि हजरत सज्जाद के पास गए थे ताकि सियासी जिम्मेदारियों के बारे में सवाल करो। बहुत खूब, उनकी राय क्या थी?
1: फर्ज कर लीजिए कि आप ठीक कह रहे हैं, तो क्या हमने कुछ खिलाफ शरीयत किया है?
0: बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं, बिल्कुल बजा काम किया है। उमरा करने को पहुँचे तो एक चक्कर इमाम सज्जाद के चचा के पास भी लगा लीजिएगा। सुना है कि जैनुल आबदीन ने अपने चचा को कूफे के मामलात में अपना वकील बनाया है।
1: तुम इतने सारे अफराद के साथ किस इलाके को फतह करने का इरादा रखते हो?
0: कूफे का आजम रखता हूँ बिन छुरे, हुक्म इमारत कूफा के साथ, और ये वो जिम्मेदारी है जो खलीफा ने मेरे कंधों पर डाली है।
1: तो इसका मतलब ये हुआ कि बिन यजीद गलत साबित हुआ। यकीनन उसकी तबाबीन से हिमायत खलीफा को नाराज कर रही है।
0: नहीं अब्दुल रहमान, नहीं, तबाबीन की हिमायत खलीफा का ईमान है।
1: ताज्जुब है, तुम तो मुझसे भी ज्यादा दूर के कोड़ी लाए।
0: जमाने के खेल से मुझे हंसी आती है बिन छुरे। जब मुझे इमारत का हुक्म मिला तो मुझे याद आ गया कि तुम उन लोगों में से हो जिनकी मुझे सबसे पहले दाढ़ी चलानी है। हैफ है, तुम्हारा मक्का में ज्यादा ठहरने का इरादा तो नहीं है?
1: कूफे में तुम्हारे पास मेरे अलावा इतनी मसरूफियात होंगी कि तुम्हारे पास वक्त ही नहीं रहेगा। हम बड़े सुकून के साथ अपनी जियारत करके बड़े आराम से वापस लौट सकते हैं।
0: आओ, तुम्हारा इंतजार करूंगा मैं। और हाँ, हमारे दोस्त की क्या खबर है?
1: अगर खुदा का कह रहे हो तो हम नजारा कर रहे हैं, और अगर शैतान के बारे में कह रहे हो तो जनाबे वाला बेहतर जानते होंगे।
0: अपने आप को धोखा मत दो, हम दोनों का खुदा और शैतान के अलावा एक तीसरा दोस्त भी है, उसका नाम अबू इसहाक मुख्तार है।
1: मुख्तार या जिंदान में है या मैदान में, बज़ाहिर बिन यजीद ने तुम्हारे लिए रास्ता हमवार बना दिया है। मैंने सुना है उसने मुख्तार को कैद कर लिया है।
0: मुख्तार को जब मैदान में होना चाहिए वो कैद में होता है, और जब उसे कैद में होना चाहिए वो मैदान में होता है। ऐसा लग रहा है कि बहुत अरसे से तुम कूफे से बेखबर हो। बिन यजीद ने मुख्तार को आजाद कर दिया और अपने आप को कैदी बना लिया, और इन दोनों के बीच में मैं फंस गया हूँ।

0: जाइए, हम बसराव कुफा के दोराहे पर पहुंच गए हैं।
1: बहुत खूब उम्मे सलीम, जुदाई का मौका आ गया।
2: हम बसरा में अजनबी हैं अब्दुल्ला, वहाँ हम किसी को नहीं जानते।
1: मैंने जनाब मुसब को लिखा है कि आप लोगों का ख्याल रखें ताकि आप लोगों को अजनबियत का एहसास ना हो। बेफिक्र रहिए, आप बसरा में खुश रहेंगी। हुकूमत बनी जुबैर के बहुत से बासर अफराद के घर वाले बसरा में रह रहे हैं, आप उनकी जान महफिल बन जाएंगी। जब हम कूफा में अपने कदम जमा लेंगे तो आपके दीदार को चले आएंगे।
2: तुम कूफे के अमीर और हाकिम हो, आखिर तुम्हारे घर वालों को तुम्हारे साथ कूफा क्यों नहीं जाना चाहिए?
1: मेरी कूफा पर हुकूमत मुख्तार जैसे खतरनाक रकीब को महार करने पर मशरूत है।
2: मगर तुम तो मुख्तार के पुराने दोस्त हो।
1: हाँ हाँ, मैं और मुख्तार बचपन से एक दूसरे के दोस्त थे, मगर फिलहाल रकीब हैं। दोस्ती जितनी करीब की हो, दुश्मनी उतनी ही ज्यादा शदीद और खतरनाक हो जाती है, और अमीरी की दुश्मनी एक तरह की जंग है। जाओ उम्मे सलीम, जाओ जाओ और ये दुआ करो कि मेरी और मुख्तार की दोस्ती हमें एक दूसरे के खून के प्यासे होने से रोक दे। जाओ खुदा की पनाह।

0: इतने बेचैन क्यों बिन मोती?
1: बड़ी तंग करने वाली जगह है। तुम बैठते थे तो पुरसुकून थे क्या?
0: जी नहीं, कितनी दफा इसने मुझे कब्र दिखा दी, इसी वजह से हम उतर चुके हैं और आप इस पर सवार। अपनी बैठक पर ध्यान रखिएगा।
1: जब मेरी बेचैनी की वजह जानते हो तो पूछ क्यों रहे हो?
0: मैं ये तसल्ली करना चाह रहा था कि गलती मेरी नहीं थी। ये सवारी एक डसने वाली शय है। हमें सहरो जादू आना चाहिए ताकि इसे मार कर सके।
1: सही, अगर सहरो जादू से हुकूमत की जा सकती तो अभी तक जादूगर नमूने इस वक्त तुम्हारी नमाज जनाजा पढ़ रहे होते।
0: जिसको कूफे में जादू ना आता हो वो मौत के घाट ही उतरता है।
1: तुम अच्छे सियासतदान हो बिन यजीद, और एक अच्छे जादूगर भी। हुकूमत करना जादूगरी से ज्यादा मुश्किल है। बाज औकात हाथ में आसाए मूसा भी हो तब भी काम नहीं चलता। हुकूमत में कुछ मामले ऐसे भी हैं जो सिर्फ टेढ़ी तलवार से ही सीधे किए जा सकते हैं। जाइए और अपने आप को मक्का मुकर्रमा के सफर के लिए तैयार कीजिए।
0: क्या ये हुकूमती सदा का हुक्म है?
1: क्यों?
0: मैं जानना चाहता हूँ, हाँ मैं जानना चाहता हूँ कि अगर खलीफा का हुक्म है कि हम मक्के चले जाएं तो सर आंखों पे चले जाते हैं, लेकिन अगर आपका हुक्म है तो इजाजत दीजिए कि हम अगली मंजिल का इंतखाब खुद कर लें।
1: अगर इंतखाब का इख्तियार दिया जाए तो कहाँ जाएंगे?
0: मक्के के अलावा कोई जगह?
1: कहीं आपको ये बुरा तो नहीं लग गया कि खलीफा ने आपकी जगह हमें बिठा दिया है? खुदा न खास्ता आप आले जुबैर को पीठ दिखाने का इरादा तो नहीं रखते?
0: हरगिज नहीं, हमने हुकूमत की शर्ते आले जुबैर की बैत नहीं की है। हमें शरई जिम्मेदारी ने बैत करने पर मजबूर किया था। जब तक खलीफा और हम हैं, हम अहद मीसाक पर हमेशा साबित कदम रहेंगे। मैं जाती तौर पर थक चुका हूँ और कुछ अरसे सियासत के खेल से दूर रहना चाहता हूँ। इब्राहिम के बारे में नहीं जानता।
2: और मैं मजारे रसूल पर जाकर मुजावरे कबरे नबी बन जाऊंगा।
1: आप लोगों की जैसी मर्जी। बिन यजीद, आप जहाँ कभी इरादा रखेंगे हमें जरूर बता दीजिएगा ताकि आपके सफर के असबाब मुहैया कर दिए जाए। और तुम बिन मुजारिब, कूफियों को मस्जिद में बुलाओ। शरण और उर्फन हमें हुकूमत को मस्जिद कूफा और उसके मेंबर से शुरू करना चाहिए। हे मुसलमानों, उस खुदा की कसम जिसका कोई शरीक नहीं, तुम लोगों की भलाई इत्तहाद में है, निफाक में नहीं। हम सब एक वाहिद खुदा रखते हैं, एक रसूल रखते हैं, हमारा एक कुरान है, एक वाहिद कबीला है, और इसके अलावा दुश्मन भी वाहिद है। बईद है कि कूफे में आज कोई फिरका खड़ा हो जाए जिसे मुरवानियों और उमवियों के फिस्क पर यकीन न हो। अगर कोई महदूद सा तबका मिल भी जाए तो वो मुंजली कौम है। आप लोगों ने यजीद के कारिंदों को कूफे से निकाल दिया मगर खतरा खत्म नहीं हुआ। मरवानियों के नाम से जाहिर होकर आपकी तरफ आ रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मरवानियों ने शामात पर कब्जा करते ही बिन दलाजा को एक लश्कर के साथ हिजाज की तरफ भेज दिया है और इब्ने ज़ियाद को इराक की तरफ। अब्दुल मलिक मरवान ने इब्ने ज़ियाद से कहा है, अगर कूफे पर मुसल्लत हो गए, अगर कूफे पर कब्जा कर लिया तो 3 दिन और 3 रात

0: रात तक 3 दिन तक कूफियों की नामूस तुम और तुम्हारे लश्कर पर हलाल है। तू ही बचा ले या अल्लाह, तू ही बचा ले या अल्लाह, तू ही बचा ले या अल्लाह, तू ही बचा ले या अल्लाह। भाइयों, दुश्मन बहुत ज्यादा और मुसल्ला हैं। अगर आप लोग ग्रोहों में बढ़ जाएंगे और बरवानियों के मुकाबले पर जाएंगे तो फतह और जफर मुयसर नहीं होगी। जैसे कि तव्वाबीन मगलूब हो गए और आयनुल वर्दा में उनका खून बहा और खुदा उनकी मगफिरत करे। बहरहाल अमीरुल मोमिनीन ने मुझे आप लोगों की तरफ भेजा है ताकि आप लोगों के लिए लश्कर तरतीब दे सकूं और आपकी सरहदों की हिफाजत करूं, आपके खराज लूं और आपके हिस्से तकसीम करूं और आप लोगों के खराज का बाकी मानदा हिस्सा आप लोगों की रजामंदी के साथ अमीरुल मोमिनीन के लिए भेज दूं। जो भी मेरा साथ देगा मैं उसका दोस्त और भाई हूं, फितनागरों का दुश्मन हूं, गुनाहगार और नाफरमान की कमर तोड़ दूंगा और मुनहरफीन और नाफरमान को कैद कर लूंगा।
1: ये तो वही इब्ने ज़ियाद का तरीका है अमीर।
0: अभी मेरा खुतबा खत्म नहीं हुआ है साहिब।
1: बातिल बातों का इख्तिताम नहीं होता। जो कुछ अब तक आपने फरमाया वो सिर्फ तकरार और तनाकुस था। इन लोगों ने वाज़ो नसीहत बहुत सुने हैं, इन्हें ऐसा अमीर चाहिए जो अपनी बातों पर अमल भी करे।
0: शैतान की बातें वो भी एक फाजिल और अकलमंद इंसान से, साहिब इब्ने मालिक आशारी की जबान से सुनना ताज्जुब खेज है। ये सिर्फ उस वक्त सुनी जा सकती हैं जब वक्त जाया करना हो।
1: मैं ऐनुल वर्दा की कत्लगाह से आ रहा हूँ शेख। आपने फरमाया कि मैं शैतानी जबान में बात कर रहा हूँ, पैद नहीं, बशर खता का पुतला है। हम सब शैतान के वसवसों की जद में है। बेशक अगर मैंने भी अपने नफ्स के शैतान को मार डाला होता तो मैं अपने तवाफ साथियों के काफिले से पीछे ना रहता। आप जो कि ईमान का नकाब चेहरे पर रखते हुए और मिंबर रसूल अल्लाह पर बैठे हुए हैं, आपको भी शैतान से डरना चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो हक की बात है, खुदा का फरमान है। साहिब, ये बातें तो हिदायत से भरपूर हैं। जो तुम्हारा दिल कहना चाहे कह दो, सर आंखों पर सुनेंगे।
1: शायद मेरी सारी बातें आपके मिजाज को अच्छी ना लगे, लेकिन अगर हकीकत के तलबदार हो तो हिदायत करें। तवाबीन ने अपनी शरई जिम्मेदारी पर अमल किया। अगर कूफे का हाकिम वक्त उनकी मदद करने में मुजायका ना करता तो ऐनुल वर्दा का मैदान आज मरवानियों का मक्तल होता, ना के तवाबीन का।
0: अगर बिन यजीद तवाबीन की मदद कर सकता था और उसने नहीं की, खुदा उसे माफ न करे कि उसने गुनाह किया है।
1: बिन यजीद ने मदद नहीं की क्योंकि ये आले जुबैर की सियासत है कि शिया कूफे में ज़ईफ हो जाएं और अकलियत में रह जाएं। ये लोग शियों को ग्रो ग्रो की शक्ल में मरवानियों के मुकाबले पर भेजना चाहते हैं ताकि शिया खत्म हो जाए और उनकी ताकत पामाल हो जाए।
0: ये गलत बात है, मुआफिक नहीं हूँ मैं साहिब। अगर तुम मेरे खुतबे को गौर से सुनते तो मैंने अर्ज किया था कि सब मिलकर दुश्मन से लड़ने जाएंगे, ग्रोहों में बंटकर नहीं और मनमानी करते हुए नहीं। अगर तवाबीन ऐनुल वर्दा नहीं जाते तो क्या आले जुबैर की तलवार उनकी गर्दनों पर थी कि क्यों नहीं जा रहे? यह कौन सा तफरका फैलाने वाला जुमला है?
1: खुदा लानत करे उस पर जिसका इरादा तफरकाबाजी हो।
0: आमीन या रब्बल आलमीन।
1: अगर आप जंग का इरादा रखते हैं तो अज़्म कीजिए, लश्कर भेजिए, शिया भी आपके साथ होंगे।
0: जी नहीं, हरगिज नहीं। तासुब से दिलों को पाक कीजिए ताकि हम सब मिलकर जिहाद करें। हालात मेरे तसव्वुर से कहीं ज्यादा खतरनाक हैं। खलीफा की तौहीन वो भी खुलेआम, यानी जुबैरियों के ऊंट को कूफे में ज़िबाह कर डालना। बिन यजीद ने हुकूमत नहीं की खेल खेला है, बिल्कुल उन बच्चों की तरह जो बादशाह बनने के खेल खेलते हैं।
2: माफी चाहता हूँ अमीर, इनसे मीठे अंदाज में पेश आएंगे तो ये हम पर सवार हो जाएंगे। आप इनसे बहुत ज्यादा अच्छे अंदाज में पेश आते हैं।
0: मुझे मजीद बरहम मत करो, मैं पहले ही अपने आप में बहुत उखड़ा हुआ हूँ। सियासत में बाज़ औक़ात एक मुस्कुराहट से

कुछ किताबें पढ़ेंगे भी और कुछ आर्टिकल्स लिखें, बिछोड़ो किताब तो दूर की बात है, कुछ आर्टिकल्स लिखना शुरू करें, कुछ पोएम्स लिखना शुरू करें, कुछ पोइट्री लिखना शुरू करें, धीरे धीरे हम मोहताज ना रहें, कोई और हमें लिख कर दे, हम गनी बने, किसी और को लिख कर हम दे सकते हैं। हमारे अंदर वो एबिलिटी, वो सलाहियत हमारे पास मौजूद है। एक इल्म की हिफाजत होगी, दूसरा बेहतरीन इनहेरिटेंस, एक बुक है, एक किताब है, उसे लिखे, नेक्स्ट जनरेशन के हवाले करें, और तीसरा जो फ़ायदा है, तलवार से ज्यादा ताकतवर कलम होता है, तलवार से ज्यादा ताकतवर कलम। कलम मखसूस, तलवार मखसूस लोगों के लिए, मखसूस टाइम के लिए, मखसूस जगह के लिए इस्तेमाल की जाती है। एक कलम से निकला हुआ जुमला तारीख में सब्त हो जाता है, वो एक सनद बन जाता है। मेरे अजीजों, आज की दुनिया में जो लोग परेशान है, पता किस चीज़ से परेशान है, किसी स्कॉलर ने कहा था, वो परेशान है हमारे मुज्तहिदीन के फतवों से परेशान है। उनके कलम से निकला हुआ एक फतवा सारे मुसलमानों को और चाहने वालों को यूनाइटेड कर देता है, मुत्तहिद कर देता है, उनके अंदर जोश पैदा कर देता है। सारी दुनिया परेशान है, एक इमाम खुमैनी का फतवा सलमान रुश्दी के खिलाफ, अरे ये फतवा कैसा है, ना पॉलिटिक्स कैसी है, ये सियासत कैसी है, दुनिया सोचती रह गई, फतवे ने सारी दुनिया पर हुकूमत कर लिया। एक निकला हुआ जुमला कभी कभार इतना असर करता है जो तलवार से ज्यादा ताकत उसमें पाई जाती है। नहीं, बात आप तक पहुंच रही है तो कहीं नसीहतें ज्यादा ना हो जाएं। तो एक ताकतवर कलम जो इंसान के हाथ में होता है, तलवार से ज्यादा उसका असर है, और हमें असर देख सकते हैं सारी दुनिया में। कभी दुश्मन को आज आयतुल्लाह सिस्तानी के फतवे का डर है जी, आयतुल्लाह खामेनाई रहमतुल्लाह अलैह के खुतबे का डर था, हसन नसरुल्लाह के एक इरादे का डर था, कासिम सुलेमानी के एक क़याम का डर था। ये डर कैसा है? डर इसलिए कि उनको मालूम है वो जो लिख देते हैं, वो बोल देते हैं, वो सच्चाई की लकीर होती है और सच्चाई का जुमला होता है। रब्बैक या हसन, रब्बैक या हसन, सब मिलके सलावात पढ़िए, मोहम्मद व आलि मोहम्मद। तलवार से ज्यादा असर कलम का, और चौथी चीज और आखिरी चीज में रिलेट करने की कोशिश करूंगा, कलम दर हकीकत इंसान की अक्ल का सफीर और एम्बेसिडर होता है। इंसान जो सोचता है ना, वो जो जुमला लिखता है, दोनों में मुताबिकत होती है। इंसान जितना गौर व फिक्र करता चला जाएगा, जब वो जुमला लिखेगा, वो जुमला बता देगा इसकी सोच क्या है, वो जुमला बता देगा इसकी फिक्र क्या है, इसके थॉट्स क्या हैं। एक जुमला इंसान की अक्ल का सफ़ीर और एम्बेसिडर होता है। कैसा इंसान था ये, वो जुमला बता देगा। इसलिए पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, शायद मैं रिलेट करने की कोशिश करूँ उलमाए कराम की इजाज़त से, पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि अगर सारे कायनात की अक्ल का एक जिस्म होता, एक पैकर होता, एक बॉडी होती इंटेलेक्ट की, उस बॉडी का अगर नाम रखा जाता तो रखा जाता हसन इब्ने अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बात आप तक पहुंच गए। अगर अक्ल का एक बॉडी, अक्ल की एक बॉडी होती, इंटेलेक्ट की एक बॉडी, तो उस बॉडी का नाम होता क्या? हसन। और इसी वजह से आपने अक्ल के, अक्ल कुल के मालिक थे आप, मुजस्सम अक्ल थे, अक्ल की बॉडी इंटेलेक्ट मुजस्सम, तो आपने कलम का इंतखाब किया ताकि कलम के जरिए से दुनिया वालों को पैगाम दे सके, कलम के जरिए से दुनिया वालों को पैगाम दे सके। क्या किया आपने? एक लिखा और दूसरा लिखवाया जी, मैं खिताबत के अंदाज में बात कर रहा हूँ आपसे। कुछ चीज़ों को आपने लिखा और कुछ चीज़ों को आपने लिखवाया। लिखा पे भी गौर कीजिएगा, लिखवाए पर भी गौर कीजिएगा। सफ़ेद कागज़, ब्लैंक पेपर आपकी खिदमत में भेजा गया, इसमें सुलह के नाम के शराइत लिखने को कहा गया, कौन शर्त रख रहा है और कौन कबूल कर रहा है ये जानना बहुत ज़रूरी है। शराइत लिख रहे हैं इमाम हसन, कबूल कर रहा है मुआविया, और लिखने वाला हमेशा मालिक होता है, कबूल करने वाला हमेशा असीर और गुलाम होता है। लिखा शराइत को किसने? इमाम हसन ने। कौन से शराइत को लिखा? मखसूस तवील गुफ्तगु है, आप थोड़ा जाइएगा, स्टडी कीजिएगा किन कंडीशंस को इमाम ने सुलह नामे पर लिखा, इमाम ने अपने हाथ से जो सनद बन गए,

जो डॉक्यूमेंटेशन के तौर पर आज इस्तेमाल किया जाता है, उस लेटर को, उस खत को जो इमाम हसन मुस्तफ़ा ने लिखा, इमाम ने लिखा चार चीज़, चार जुमले आज मैं बता दूँ कि इमाम ने क्या लिखा। इमाम ने पहला जुमला लिखा कि मुआविया कुरान और सुन्नत पर अमल करेगा। जी सुन लीजिएगा, मैं पढ़ के आया हूँ, घबराइए नहीं जी। पहला जुमला कुरान और सुन्नत पर अमल करेगा। एक्सेप्ट किसने किया? मुआविया ने। इसका मतलब है अब तक जो बातें हो रही थी उनके काम हो रहे थे, ना कुरान से मुताबिकत कर रहे थे ना सुन्नत में मुताबिकत रख रहे थे, वो कुरान और सुन्नत से दूर था। इमाम ने कहा आज के बाद कुरान और सुन्नत पर अमल होगा, नंबर वन। नंबर टू, अली के चाहने वालों की जान और माल की हिफाजत होगी। अब उनका कोई कत्ल आम नहीं होगा, ना सहाबियों का कत्ल होगा, अली के सहाबियों का, और ना ही उनके चाहने वालों का कत्ल होगा। इसका मतलब यह है इससे पहले जितने अली के चाहने वालों का कत्ल हुआ है इन्हीं साहब का ये काम था, जितने सहाबा को कत्ल किया गया है इन्हीं का, बनी उमैया का काम था। इमाम ने दूसरी कंडीशन रखी। तीसरी कंडीशन ने इमाम जो रखी वो ये कि आज के बाद मिंबरों से अली के खिलाफ कहा और बोला नहीं जाएगा। इमाम ने कंडीशन बोला, ये कौन सी कंडीशन है? कंडीशंस देखिए, इमाम कौन सी कंडीशन लिख रहे हैं सुलहनामे पर। पहली कंडीशन याद है आपको, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन, चौथी कंडीशन क्या है जो इमाम ने इस जुमले में रखी? वो कंडीशन जो करबला तामीर करती है, वो कंडीशन क्या है? मुआविया को हक नहीं है कि अपने बाद अपना जानशीन मुअय्यन करे। मुआविया के बाद अगर कोई इस्लामी गवर्नमेंट का हाकिम और इमाम होगा तो वह हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम होंगे। जिंदाबाद। देखिए चार कंडीशंस जो इमाम ने बनाए, चार कंडीशंस जो इमाम ने रखे हैं, चारों कंडीशंस में दो काम इमाम ने किए इस कंडीशन के ज़रिए से। कलम की नोक को आपने खंजर बनाया, कलम की नोक को आपने तलवार बनाया, और कागज़ को बनी उमैया के लिए कफन बना दिया और ऐसे दफनाया कि आज तक बनी उमैया का नाम ना इज्जत से लिया जाता है और ना उन्हें इज्जत दी जाती है। चार शरायत के जरिए से सारी बनी उमैया को आपने कोड़ादान के हवाले कर दिया। वो तख्त है किस कब्र में, वो ताज कहाँ है? अय खाक बता जोरे यजीद आज कहाँ है? आज ढूंढते चले जाओगे ना यजीद मिलेगा ना यजीद का बाप मिलेगा। क्यों? ये कलम की नोक को आपने खंजर बनाया, जख्मी कर दिया बनी उमैया को। और दूसरे जो शरायत के जरिए से इमाम ने हुसैन बनेंगे इमाम और अली के चाहने वालों की जान की हिफाजत होगी, ये दो जुमले कहकर इमाम ने एक करबला तामीर कर दिए, करबला तामीर कर दिए। हुसैन करबला इमाम ने तामीर कर दी, बनी उमैया को खत्म कर दिया अखलाकी तौर पर, कॉन्टेक्ट के एतबार से, और एक नई करबला तामीर कर दिया। अब हुसैन कयाम करेंगे, अगर हुसैन को यह हक नहीं दिया जाता तो हुसैन कयाम करेंगे, हुसैन इनकलाब बरपा कर। इस इनकलाब की बुनियाद किसने रखी? इस इनकलाब की बुनियाद कलम के ज़रिए से इमाम हसन मुजतबा अलैहि सलातो वस्सलाम ने रखी है। इमाम ने लिखा कंडीशंस को और तो उसको तारीख के हवाले किया, वो सनद है। यह इमाम की अक्ल और इमाम की इंटेलेक्ट, और इमाम ने सही जो फैसला किया है वो फैसला तारीख में मोतबर है। इमाम ने एक लिखा और दूसरा लिखवाया। क्या लिखवाया इमाम ने? आज बहुत ज़रूरत है इसकी। मांगने वालों की इज्जत का ख्याल करना हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मोहताजों का ख्याल करना हम सब की जिम्मेदारी है। जहाँ भी इमाम हसन का नाम आता है ना, सबसे पहला लफ्ज़ जो हमारे जहन में आता है कि इमाम करीम अहलुल बैत अलैहिस्सलाम। सबसे ज़्यादा इन्फाक करने वाले, सबसे ज़्यादा सखावत करने वाले, आपके नाम का दस्तरखान मशहूर है, आपके नाम का आपका इन्फाक मशहूर है, सखावत मशहूर है। सहाबी आया, एक मांगने वाला आया आपकी खिदमत में, आने के बाद कहा इब्ना रसूलिल्लाह सवाल है, एहतियाज है, नियाज है। इमाम ने फरमाया मांगो नहीं, लिख कर दे दो। ये इसे कहते हैं इमाम हसन, यानी लिखवाया। मैंने कहा ना लिखवाया, मांगो नहीं लिख कर दे दो। उसे कहा मौला क्यों? बाज़ा साहब जो आपके इर्द गिर्द बैठे हुए थे, मौला क्यों? कहा मांगने में जो शर्मी

हो इमाम ऊपर, अगर इमाम ऊपर आना चाहे तो क्या करे, अल्लामा ज़ीशान दरजवादी का जुमला, इमाम ऊपर आना चाहे तो क्या करे, वो लोगों के उठाने से बुलंद नहीं होता, वो या पुश्ते रसूल पर आएगा बुलंदी के लिए, या उसके कदम दोशे पैगंबर पर आएंगे आसमान तक बुलंदी के लिए। लब्बैक या हसन, या वो पुश्ते रसूल पर आएगा या दोशे नबी पर खड़ा होगा, उसकी बुलंदी वहां पर है, लोगों के आगे बढ़ाने से वो बड़ा नहीं हो जाता। कहा लिख कर दे दो, उसने लिख कर दिया, इमाम ने उसके तकाजे से ज्यादा उसको अता किया। मौला आज ये चाहने वाले आपके, ये मानने वाले आपके, ये मातम करने वाले आपके, आपकी बारगाह में आए हैं। कई लोग हैं मोहताज दुआ हैं, बीमार हैं, कर्जदार हैं, परेशानियां हैं उनकी जिंदगी में, आलम इस्लाम में परेशानियां हैं जी, आलम इस्लाम में परेशानियां हैं, लबनान में परेशानियां हैं, दुश्मन कसम खाया हुआ दुश्मन जमहूरी इस्लामी ईरान के पीछे पड़ा हुआ है, ये खानदानी दुश्मन, ये समय लफ्ज इस्तेमाल करता है, खानदानी दुश्मन कुछ खानदानी लोगों के पीछे पड़ा हुआ है, जिन्होंने इज्जत को बचाया, दीन को की हिफाजत की, उनके पीछे पड़ा हुआ, उनके लिए दुआ करना हम सब का फरीजा है। कहीं ऐसा ना हो इस गिर उदार में हम दुआएँ भूल जाएँ, दुआओं को हमेशा याद रखिएगा, उनको दुआ कीजिएगा ताकि अल्लाह तबारक व तआला सारे मजलूमीन को कामयाब करे और उन्हें नुसरत अता फरमाए। कभी कभार मजलूमियत के लिए दुआ करना कि अल्लाह तबारक उनकी मदद फरमाए, कभी ये भी दुआ करें परवरदिगार उन्हें कामयाबी अता करे। लिख कर दियो, लिख कर दिया, उसके तकाजे से ज़्यादा इमाम ने उसको अता किया। अता करने के बाद बाज़ लोगों ने कहा, जो असहाब बैठे हुए थे, यबना रसूलिल्लाह कितनी बाबरकत पर्ची है, चिट है, ये लेटर है, उसने लिख कर दे दिया, कितनी बाबरकत लेटर है कि उसको जो उसका तकाजा था वो उसे मिल गया, कितनी खूबसूरत चीज़ उसे मिल गई। तो इमाम ने फरमाया, नहीं, उसकी मिली हुई चीज़ उतनी ज़्यादा कीमती नहीं है जितना उसने मुझे दिया है, जो मैंने दिया वो ज़्यादा कीमती नहीं है जो उसने मुझे दिया है। बोला, उसने तुम्हें क्या दिया? कहा, मैंने उसे दौलत दी है, पैसा दिया है, उसने मुझे अपनी इज्जत दी है। मांगना और लिख के देने का मतलब अपनी इज्जत देना है, उसने मुझे इज्जत दी है और मैंने उसको पैसा दिया है, वो इज्जत जो मुझे दी है वो इज्जत बड़ी कीमती है। सलाम हो इस इमाम पर जिसने इस्लाम की आबरू रख ली, जिसने इस्लाम की आबरू रख ली, सुलह के ज़रिए से इस्लाम को बचाया, कुरान के आबरू को बचाया और मुसलमानों को बचाया, मकतब तशय्यो की हिफाजत की, करबला तामीर की, और उसके बाद इमाम ने अपनी सखावत के ज़रिए से, इन्फाक के ज़रिए से लोगों की आबरू, लोगों की इज्जत को महफूज रखा। सुलह आपकी शजाअत की दलील है और इन्फाक आपकी सखावत की दलील है, और आपसे बड़ा सखी कौन, आपसे बड़ा शुजा कौन है? शुजाअत और सखावत, सुलहनामा पे शर्त रखना शजाअत की दलील है, कमज़ोरी की दलील नहीं, किसी की मदद करना सखावत की दलील है, और दोनों चीज़ों को एक जा देखना चाहते हैं वो करबला में देखो। कासिम ने इमाम का वसीयतनामा खोला या तावीज़ को खोला तो उसमें लिखा हुआ था कि तुम्हें बेटा कासिम, अब तुम्हें शजा भी बनना है, तुम्हें सखी भी बनना है, शजा भी बनना है, सखी भी बनना है। इमाम के वसीयतनामा हो या तावीज़ हो, दरख़त इमाम ने पैगाम दिया कि मेरा भाई मेरी सुलह में शरीक था, तो क्यों ना हो कि मैं उस हुसैन के क़याम में शरीक हो जाऊं, अगर मैं शरीक नहीं हो सकता तो मेरा बेटा उस क़याम में शरीक होगा। बड़े दुख उठाए इस इमाम ने, बड़े दुख उठाए इस इमाम ने, कोई इमाम की गुर्बत को बयान नहीं कर सकता, कोई बयान नहीं कर सकता। किसी ने कहा किसी आलिम दीन के हुजूर में कि इमाम हसन मुज्तबा गरीब हैं, तो आलिम दीन ने पूछा क्यों गरीब हैं, क्यों इमाम हसन मुज्तबा गरीब है, कभी सोचा है तुमने हसन मुज्तबा क्यों गरीब हैं? उससे पूछा, बताइए आगा, आप बताइए इमाम हसन मुज्तबा गरीब क्यों हैं? तो गुर्बत इस वजह से कि आज आपकी कब्र पर रोज़ा नहीं है, गुर्बत इस वजह से कि आपकी कब्र पर आज कोई चराग जलाने वाला नहीं है, गुर्बत इस वजह से कि आपकी कब्र आज सिवाय गबार के उस कब्र पर धूल के और कुछ भी नहीं है, क्या ये भी गुर्बत हो सकती है? और क्या हो सकता है? क्या गुर्बत इस वजह से कि आपके जनाजे पर तीर बरसाए गए,

इस वजह से आप गरीब हैं। आपने कहा ये भी वजह हो सकती है कि आप गरीब हैं। आप गरीब हैं इस वजह से कि आपके घर में आपको परेशान किया गया। आदमी को बाहर सुकून मिलता है, बाहर सुकून नहीं मिलता है तो वह घर आ जाता है, जिसको घर में सुकून ना मिले वो कहाँ जाए। इस वजह से कि आपको घर में परेशान किया गया, इस वजह से आप गरीब हैं। कहा ये भी हो सकता है गरीब हैं, ये भी गुर्बत की निशानी हो सकता है। उसके बाद पूछा आप बताइए आगा गुर्बत की निशानी क्या है। कहा गुर्बत की निशानी हसन की वहाँ से शुरू होती है जहाँ उस गली में शहजादी के चेहरे पर तमाचा लगाया गया था और हसन मुश्तबा का हाथ बीबी के हाथ में था। मुद्दतों इमाम हसन उस वाक़े को याद करके रोया करते थे। हत्ता हज़रत फिज़ा ने कहा मौलाए किनाय से ख़िताब करके, या अमीर अल मोमिनीन ज़रा हसन को संभालियो तो सही। पूछा क्या बात है। कि जब भी रात का अंधेरा होता है हसन रोने लगता है, बहुत रोने लगता है। क्या देखा होगा हसन ने, बहुत गिरिया किया। यहाँ से इमाम हसन मुश्तबा की गुर्बत का आगाज़ होता है, गुर्बत का आगाज़ होता है। बहुत दुख देखे इमाम हसन मुश्तबा ने, बहुत दुख देखे। अपने माँ के बदन को जो फसलियों को तोड़ा गया था, उस दुख को भी इमाम हसन ने सुना, महसूस किया। बाप के सर पे जो ज़र्ब लगाई गई थी, इमाम हसन ने उसको भी देखा। जालिमों, इसने दुख देने वाले को जहर नहीं दिया जाता। बाज़ रिवायतों में 7 मरतबा इमाम हसन मुश्तबा को जहर दिया गया। जब 7वीं मरतबा जहर मंगवाया गया, पहला इमाम है जिसे जहर दिया गया है, जब जहर मंगवाया गया तो रोम वालों ने कहा इस जहर को किसी इंसान को ना देना, अगर ये दरिया में जहर डाल दिया जाए तो सारी मछलियाँ मर जाएंगी, किसी इंसान को ना देना। ज़ालिमों ने उसी जहर को इस इंसान के हवाले किया जिसने मस्कीनों को खाना खिलाया, यतीमों को खाना खिलाया, उसको तुमने जहर खिला दिया। जिसने उम्मत का ख्याल किया उसको तुमने जहर खिला दिया। इमाम के दिल के टुकड़े कट कट कर गिरने लगे। तश्त करीब लाया गया, इमाम के जिगर के टुकड़े तश्त में गिरने लगे। और एक मर्तबा महसूस किया इमाम ने कि ज़ैनब कुबरा को बुलाया गया है, अली की बेटी आ रही है। तो इमाम हसन ने ख़िताब किया अपने भाई हुसैन से, भैया इस तश्त को छिपा देना, इस पर ज़ैनब की नज़र पड़ेगी तो टूट जाएगी। ज़ैनब की नज़र इस तश्त पे पड़ने ना दे। कितना ख्याल था अहले बैत को ज़ैनब के शख्सियत का। बाज़ उलमा ने कहा शहज़ादी ने वसीयत की थी अबुल हसन मेरे सीने पर ज़ैनब को आने ना देना, सीने का ज़ख्म देखेगी तो परेशान हो जाएगी। मौलाए कायनात ने कहा घर करीब आए बेटा हसन तो मुझे बता देना, मेरे सर पे कपड़ा बांध देना ताकि सर के ज़ख्म पर ज़ैनब की नज़र ना पड़े। इमाम हसन ने कहा भैया हुसैन उस तश्त को छिपा देना जिस तश्त में जिगर के टुकड़े हैं ताकि ज़ैनब की नज़र ना पड़े। मैं कहूँगा शहज़ादी आपने ज़ख्म तो छिपा लिया, मौलाए कायनात आपने सर के ज़ख्म छिपा लिया, मौलाए इमाम हसन आपने जिगर के टुकड़ों को छिपा लिया, है कोई करबला में ज़ैनब की निगाहों पर कपड़ा डाल दे, है कोई ज़ैनब की निगाहों पर कपड़ा डाले, है कोई जरा ज़ैनब को दूर ले जाए। अरे वो मंजर ना देखे कायनात में किसी बहन ने नहीं देखा जो ज़ैनब ने देखा है। सीने पर शिम्र सवार और हाथ में कुंद खंजर हो और दूसरे हाथ में रिश मुबारक के इमाम हुसैन हो, कुंद खंजर हो और प्यासा गला हो, कोई है जो ज़ैनब की निगाहों पर पर्दा डाल दे। इमाम हुसैन ने वो मंजर देखा कि अपने भाई के जिगर के टुकड़े तश्त में गिर रहे हैं। इमाम हुसैन के आंखों से आंसू टपके। एक मर्तबा हसन मुश्तबा ने इमाम हुसैन की तरफ देखकर कहा भैया रोना नहीं, ये मुसीबत कुछ भी नहीं है, ला यौमा कयौमे कया अबा अब्दिल्ला, अबा अब्दिल्ला जो दिन आप पर आने वाला है वैसा दिन किसी पर ना आया है ना आएगा। रसूल इस्लाम इस दुनिया से गए, मेरे बाबा मौजूद थे, अरे मेरी माँ इस दुनिया से गई, मेरे

0: मेरे बाबा इस दुनिया से जा रहे थे, मैं तो आए भैया हुसैन तुम थे, और मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ, मेरे सराहने तुम हो, यकीन है गुस्ल भी दिया जाएगा, कफन भी पहनाया जाएगा, लेकिन ऐ हुसैन जो दिन तुझ पर आने वाला है, ना बाबा होंगे, ना मैं रहूंगा, ना अब्बास, तू होगा और तेरी तनहाई। ला यौमा का यौमिका या अबा अब्दिल्ला। हुसैन के आंखों से आंसू। एक मर्तबा हुसैन एक जुमला कहा, जो जुमला मसाइब का एक जुमला है, मसाइब का एक समंदर बन गया वह जुमला। इमाम हुसैन ने हसन की तरफ देखकर कहा, भैया हसन, अरे नुकसान में वो इंसान नहीं है जिसका माल चला जाता है, नुकसान में वो इंसान नहीं होता है जिसका घर लुट जाता है, नुकसान में वो इंसान नहीं होता है जो दुनियावी परेशानियों में मुब्तला हो जाता है। भैया हसन, नुकसान में वो इंसान है जिसकी निगाहों के सामने हसन जैसा भाई दुनिया से चला जाता है। अरे वो भाई कमजोर पड़ जाता है जिसकी निगाहों के सामने वो दूसरा भाई इस दुनिया से चला जाता है। मैं कहूंगा मौला आपने मसा पढ़ दिया जब इमाम हसन इस दुनिया से गए, लेकिन संभालने वाले मौजूद हैं, तसल्ली देने वाले मौजूद हैं। मौला जब आप अब्बास के सराहने पहुंचेंगे, जब कटे हुए हाथों को देखेंगे, कोई ना होगा जो हुसैन को तसल्ली दे, कोई ना होगा जो हुसैन को तशफी दे। फरजंद फातिमा दश्ते करबला में गरीब हो जाएगा। على لعنة الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
1: الدقة عندما تبدأ نعوش الجنود الأمريكيين والضباط الأمريكيين بالانتقال النعوش عندما جاءوا عموديا ويعودون أفقيا، سيدرك ترامب وإدارة ترامب أنهم فعلا خسروا المنطقة وسيخسرون الانتخابات. وإذا تحقق هذا الهدف، وسيتحقق هذا الهدف إن شاء الله، سوف يصبح تحرير القدس على مرمى حجر. عندما تخرج أمريكا من المنطقة، سيجمع هؤلاء الصهاينة ثيابهم في حقائبهم ويرحلون. قد لا نحتاج إلى معركة مع إسرائيل.

बहुत शुक्रिया, तशरीफ रखें, तशरीफ रखें, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत शुक्रिया।

0: coming.
1: बहुत शुक्रिया आप सबका. बहुत शुक्रिया. आप लोग बैठ जाइए.
0: ख्वाहिश में करना.

0: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप लोग बैठ जाइए। परवरदिगार आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। शुक्रिया, शुक्रिया। तशरीफ रखिए।
1: तेहरान से काफ़ी दूर शुमाले ईरान में और मौसम गर्मा में अचानक आसमान से लोगों पर बारिश बरसने लगी। रहबरे मौज़म ने ताकीद के साथ आवाम से तकाजा किया कि बारिश की वजह से मुंतशिर हो जाएं और घरों को चले जाएं, लेकिन रहबर के साथ वफाए अहद की खातिर कोई ना गया।
0: आपको कब तक हम इस बारिश में रोके रखेंगे?

ये आपकी मोहब्बत है, यह आपकी मोहब्बत और अकीदत है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैं इस छत के नीचे बैठा हूँ और आप बारिश में खड़े हैं। ये वो बात है जो मुझे नागवार है।

सन 970 ईस्वी की एक रात जब वो नमाज़े तहज्जुद पढ़ रहे थे, बनू अब्बास के गुमाश्तों ने उन्हें कत्ल कर दिया था। शाह सफी दौर में अब्बास कबीर की हुकूमत में इनकी कब्र पर एक जरी बनवाई गई और आज तक ये मुकाम हर खासो आम की तवज्जा का मरकज बना हुआ है।

0: तफरिश से कुछ दूर इराक के पहाड़ों के पीछे हजावा गांव छुपा हुआ है।
1: अगर आप हजावा के अतराफ में देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि यहां बहुत सारे चश्मे पाए जाते हैं। कदीम किताबों में इसका नाम हजार आबा था, जो बाद में मुख्तसर होकर हजावा रह गया।

यहाँ गांव के सामने पहाड़ी के ऊपर एक जरी है जिसे रहबरे मौजम की 27वीं जद से मंसूब किया गया है और उनका नाम सैयद अहमद इब्ने सैयद मोहम्मद था। वो एक फकीह और मुबल्लिग थे। वो इस्लाम मोहम्मदी और 12 इमाम

0: लगता है कि जैसे ताज़ा दफन किया गया है।
1: हुसैन तफरिशी, जिन्हें शहर तफरिश की वजह से तफरिशी कहा जाता है, वो रहबरे मौज़म के दादा हैं। आप तबरेज के करीब खामना शहर में 1222 में पैदा हुए। इस शहर के लोग तुर्की जबान बोलने वाले आज़री हैं। यहां से मालूम होता है कि आकाए खामनाई ने तुर्की जबान कहां से सीखी है।
2: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपकी मोहब्बतों का मशकूर और ममनून हूं मैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मैं बहुत खुश हूं कि मुझे दूसरी मर्तबा तौफीक हासिल हुई है कि मैं खामना आऊं और आप मेहरबान और मेहमान नवाज लोगों से मुलाकात करूं। खामना शहर मेरी यादों का शहर है। मेरा तहसील इल्म का शहर है। मैंने खामना शहर में बहुत कुछ सुना है। 20 साल पहले जब मैं अपने मरहूम वालिद से मुलाकात करने खामना आया था, एक 2 घंटे में यहां ठहरा। यहां की मशहूर चीजें मुझे दिखाई गईं, जैसे एक मस्जिद और एक अहम जगह मैंने देखी। ये जगहें मेरे लिए बहुत दिलचस्प और खूबसूरत थी।
1: जनाब तफरिशी तबरेज शहर में कुरहा बागी रोड पर रहा करते थे। वो वहां की एक बड़ी जामे मस्जिद के पेशे नमाज थे।

0: कि वो आकाए खामनाई के फुप्पा थे।
1: मेरे वालिद तबरेज के मशरूते इनकलाब के वक्त में नौजवान थे। वो तमाम वाकयात के शाहिद थे। मरहूम बाकर खान और उनका एक ही मोहल्ला था, कूचा कुर्रा बागीहा। उन्होंने अपनी आंखों से सारे मसायब व आलाम को देखा था और बयान किया करते थे। बाद वाले वाकयात में भी ऐसा ही है। मरहूम शेख मोहम्मद खयाबानी के वाकये में भी शाहिद हैं। तबरेज में मरहूम शेख अकेले ही डट गए थे। अहम मसला वसुकुद्दौला का मुआहिदा था। तहरान के कमजोर हुकूमत के आला हुकाम ने एक मुआहिदे के जरिए मुल्क के माली और अस्करी मामलात को अपने दो हाथों के साथ बरतानिया के हवाले कर दिया। तबरेजी उठ खड़े हुए। मरहूम खयाबानी और दूसरे लोग इस मुआहिदे के खिलाफ डट गए और फिर तबरेज में वो जालिमाना अजीबोगरीब वाकयात रोनुमा हुए। तबरेज आज भी ऐसा ही है।
0: आयतुल्ला जवाद खामनाई, आकाए हुसैन तफरिशी के बेटे और सैयद अली खामनाई के वालिद। उन्होंने इब्तदाई तालीम तबरेज से हासिल की और फिर आला दीनी तालीम का हुसूल नजफ़े अशरफ से किया। 1310 में तदरीसी सिलसिले को शुरू करने की खातिर मशहद का इरादा किया।
2: हमारे वालिद साहब के जवानी के आलम में हौजा नजफ़ अशरफ में तालीम हासिल कर रहे थे और वहीं उन्होंने शादी की। नजफ़ अशरफ में तालीम मुकम्मल करने के बाद ज़ाहिरन 1309 में मशहद चले गए। मेरे ख़्याल में रज़ा ख़ान डिक्टेटर का दौर था।

मशहद खुरासान का सबसे बड़ा शहर है और तेहरान के बाद ईरान का दूसरा बड़ा शहर है। इसकी शोहरत और इसकी दलील अजमत वो हरम है जो मरकज़े शहर में आस्ताना रिजवी के नाम से मौजूद है। यहाँ अइमतुल मुस्लिमीन में से आठवें इमाम अली इब्ने मूसा उल रज़ा अलैह सलाम की कब्रें मुतहर है। अगर आप ऊपर से शहर पर निगाह करें तो आप मशहद शहर और हरम मुताहर के दरमियान तारीखी राब्ते की तरफ मुतवज्जा होंगे। कहा जाता है कि शहर अपनी खुशबू से पहचाना जाता है। यहाँ जो खुशबू पाई जाती है वो इसके मरकज से यानी हरम मुताहर से सारी गलियों, घरों और सारे शहर में फैली हुई है। कौन कहता है कि शहर दिल और रूह पर असर नहीं करता? जब आप किसी शहर को रिहाइश के लिए इंतखाब करें तो आप जैसी खुशबू अपने वजूद में चाहते हैं वैसे ही शहर इंतखाब करें।

हरम मुताहर के करीब ये वो जगह है जहां अली खामनाई दुनिया में आए। यहां एक बच्चा परवरिश पाएगा जो मुस्तकबिल में एक ज़हीन तालिबे इल्म, तवाना मुबल्लिग, मजबूत मुदर्रिस, बुलंद पाया मुजद्दिद, अजीम इनकलाबी और हर मैदान में कामयाब शख्स होगा। ईस्वी में आकाए जवाद इब्ने हुसैन तफरिशी मशहद पहुंचे और फिर वहीं कयाम पजीर हो गए। मशहद के लोगों ने खामना से आए हुए आलिम दीन को खामनाई का लकब दिया और ये लकब उनके घराने और खानदान के साथ ऐसा जुड़ा कि आज उनकी पहचान

दान बन गया। आकाए जवाद खामनाई अपने आसपास से कम ही राब्ता रखते थे और उन्होंने अपना हलका एहबाब बढ़ाने की कोशिश ना की। इसके बावजूद के वो एक मुसल्लम मुज्तहिद थे, लेकिन उन्होंने मदरसे की बुनियाद ना रखी बल्कि उनके सिर्फ चंद एक मखसूस शागिर्द थे। आकाए

मामत अपने जिम्मे ली। वो आजरी तुर्कों की मस्जिद मशहूर थी जो कि सरशोर बाजार के शुरू में वाक़े थी। आप उसी मस्जिद में रहे यहाँ तक कि हरम की तौसी मंसूबे में मस्जिद शहीद कर दी गई। फिर हरम के करीब उसी नाम से दोबारा मस्जिद तामीर करवाई गई।

0: लेकिन मेरे वालिद शायद अकेले या दो चार उलमा में से एक थे जिन्होंने ऐसी किसी तकरीब में शिरकत नहीं की।
1: चालीस साल की उम्र में उनकी पहली बीवी फौत हो गई, उसमें से उनकी तीन बेटियां थीं। फिर आकाए जवाद खामनाई ने आयतुल्ला हाशिम नजफाबाद मीर दमादी की बेटी से शादी की, जिनका नाम खदीजा था।
2: हमारे बाबा बुजुर्ग आयतुल्ला सैयद हाशिम नजफी मस्जिद गौहर शाद मशहद में तफसीर कुरान का दर्स कहा करते थे, लिहाजा आकाए खामनाई के नाना आकाए हाशिम नजफ आबादी मीर दमाद मस्जिद गौहर शाद में तफसीर कुरान का दर्स दिया करते थे। वो बुलंद मर्तबा आरिफ इंसान थे। आकाए बहबत कहते हैं कि वो नमाज तहज्जुद के वितर में कुनूत पढ़ते हुए सारी दुआएं अबुल हमजा समाली पढ़ लिया करते थे, जबकि अगर देखा जाए तो ये दुआ वाकई बहुत ज़्यादा ही तवील है। वो नजफ अशरफ के अजीमुल मर्तबत अरफा में से एक थे।
3: आयतुल्ला हाशिम नजफ आबाद सन 40 में मशहद आए और मस्जिद गौहर शाद में इमामत के फराइज अंजाम देना शुरू किए। जहां वो नमाज पढ़ाया करते थे वहां उनका नाम लिखा हुआ है और आज ये जगह शबिस्तान आयतुल्ला सैयद हाशिम नजफ आबादी के नाम से मशहूर है।
1: आयतुल्ला हाशिम नजफ आबादी समाजी और सियासी कामों में मशहूर थे। उनका घर ऐसे उल्मा के इकट्ठे होने की जगह थी जो रजा पहलवी जालिम निजाम के मुखालिफ थे। खास तौर से 1314 में मस्जिद गौहर शाद के वाकियात और रजा पहलवी की जानिब से ममनूयत हिजाब के बाद ये घर एक मरकज बन गया था। नमाजियों ने रजा पहलवी के इस कानून की मुखालफत में मस्जिद गौहर शाद में धरना दिया। इस वाकये में हुकूमत ने आकाए हाशिम नजफ आबादी को गिरफ्तार कर लिया और 8 साल के लिए मशहद से शहर बदर कर दिया। 1322 में वो वापस मशहद तशरीफ लाए और उन्होंने इल्मी और समाजी कामों को दोबारा शुरू किया और फिर 1338 में दावत हक को लब्बैक कहा।
4: हमारी वालदा ने अपना बचपना अपनी माँ के बगैर गुजारा है। हमारी दादी एक आलिमा थीं, उन्होंने मेरी माँ की परवरिश की थी। मेरे नाना आकाए सैयद हाशिम नजफ आबादी हैं जो कि मशहद के इनकलाबी उलमा में से थे। हाल ही में मशहद में उन पर एक सेमिनार मुनाकिद किया गया था। आकाए खामनाई ने उनके लिए इस सेमिनार में ख़त भेजा था। इस ख़त में उनके इल्मी मकाम और कारहाए नुमाया को बहुत बारीक बीनी के साथ और मुख्तसर अंदाज में बयान किया गया था।
1: आकाए सैयद हाशिम नजफ आबादी का सिलसिला नसब तकरीबन 30 नस्लों के फासले से छठे इमाम जाफर सादिक अलैह सलाम से जा मिलता है। उनके सिलसिले नसब में जो चीज़ ज़्यादा काबिल तवज्जा है वो ये है कि आकाए सैयद हाशिम नजफ आबादी जो कि रहबर मौजम के नाना हैं, आकाए मुहक्किक करकी लबनान के पोते हैं। इसका मतलब है कि आकाए खामनाई अपने अजदाद के वास्ते से लबनानी मिजाज भी रखते हैं। मरकजी बका

अभी तक जो कुछ कहा गया है आकाए खामनाई के वालिद और उनके अजदाद की तारीख और सीरत का एक मुख्तसर सा हिस्सा था। ये मर्द अपनी सलाहियतों और कोशिशों के अलावा 1400 साल तजुर्बा मुजाहिदत और इनकलाबी तरीकों का हासिल है। वो ऐसे खानदान की नस्ल से है कि जिनमें सियासत और मुजाहिदत इनकी तहजीब और जिंदगी के तमाम पहलुओं में रची बसी हुई है, जिसकी बिना पर उनके अजदाद की कबूर खास व आम के लिए ज़ियारतगाह बन गई और लोग वहां से नई फिक्र और जज्बे लेकर जाते हैं। ये सब कुछ ऐसे शरबत में शामिल था जिसे इन्होंने बचपन में पिया था और जिसके असरात उनकी आइंदा जिंदगी में बहुत गहरे नजर आते हैं।